आत्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि नहीं होती, पर जिसका केंद्र शरीर में है। मृत्यु इस केंद्र का स्थानांतर मात्र है। परमात्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है, पर केंद्र सभी जगह है। जब हम शरीर के इस समीप केंद्र से बाहर निकलने में सफल हो सकेंगे, तभी हम परमात्मा की अपने वास्तविक रूप की प्राप्ति कर सकेंगे। आत्मा न कभी आती है, न कभी जाती है, न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। प्रकृति ही आत्मा के सम्मुख गतिशील है और इस गति की छाया आत्मा पर पड़ती रहती है। भ्रमवश आत्मा सोचती रहती है कि प्रकृति नहीं, वही गतिशील है।

प्यारे श्रोताओं, ये था आज का नीति वचन और आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र से अरुण FM 103.1 MHz पर, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं और आज साल 2026 के मई महीने की 13 तारीख है और दिन है बुधवार। और श्रोता, हर रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेरों ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कार्यक्रमों से भरपूर हमारे ये ट्रांसमिशन। श्रोताओं, आप सभी को ये भी बता दें कि हमारे आज के पहले प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं HPT में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक गोपाल राय और तकनीकी अभियंता होली राम ब्रह्मा। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो साथी बामिन सुम्पी। तो चलिए श्रोताओं, हम आपको आगे बताते हैं अब से लेकर सुबह के 11 बजे तक होने वाले सभी कार्यक्रमों की जानकारी।

सुबह 6:45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। 7:10 पर आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम और 7:15 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इंटरटेनमेंट।

सुबह 7:35 पर आप सुन पाएंगे तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम और 7:40 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सदाबहार और 8 बजे आप सुन पाएंगे समाचार प्रभाग मॉर्निंग न्यूज और नोटिस न्यूज।

कार्यक्रम हेलो ईटानगर आप सुन पाएंगे सुबह 8:40 पर और 9 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और 9:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप।

0: सुबह 10 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और 10:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। तो श्रोताओं, ये थे अब से लेकर सुबह के 11 बजे तक होने वाले सभी कार्यक्रमों की जानकारी, और अब से थोड़ी देर में यानी ठीक 6 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिल वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना

0: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test on NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for investigation in the matter. The NEET UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency on 3rd of this month. In this case, Special Operations Group of the Rajasthan Police has so far detained 15 people. The Special Operations Group yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Nashik Police have also detained a man in connection with the NEET paper leak case. CBI has now taken his custody. In Tamil Nadu, the TVK government is scheduled to prove its majority in the assembly today. Chief Minister C. Joseph Vijay has been holding meetings with leaders of supporting parties to consolidate support ahead of the floor test. Along with the backing from allies, the TVK government has secured the support from the breakaway faction of AIADMK and the lone MLA of AMMK, S. Kamaraj. The TVK now has support of around 150 MLAs in the assembly. Meanwhile, in a dramatic turn of events in the political situation in Tamil Nadu yesterday, the AIADMK split into two groups over extending support to the government. The faction, led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy, has directed

सपनों के बगीचों में भगवान वो हल्की बारिश है जो हमारी आकांक्षाओं के बीजों को पोषण देती है, उन्हें वास्तविकता के फूलों में खिलने में मदद करती है। तो आइए श्रोताओ, हम आपको अब ले चलते हैं भगवान के चरणों में और आपको सुनवाते हैं कुछ भक्ति गीता।

0: अरुणाचल प्रदेश गए अफाव का दम ने दिन से बोई बोलम ने लगदक बमला रिर मरी नम गरीब रिदु ना कै मदाक लोन अलोलो दिवंग गए एमले डुर्बे फुरफा सिरिंग बोमदिला गए बुद्धा स्टेडियम लो नरु पब्लिक गर लगा बा स्मार्ट पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड गो मोकोक जीतू बोर्ड सिगिम ने एसबीआई बोमदिला का पहला लोका मोलिक जीतू स्मार्ट बोर्ड सिगिम नरु पब्लिक अपने गवर्नमेंट का योन स्कीम का दू दो एगम कम आयो काचेन जीता को स्ट्रिंग लो कातम रहे अमदाग दो नहीं लो एमले सेटिंग चोंग बे टेंजिंग निमा ओके वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर दिन में दिलीप कुमार ओके कब कब काई ना निगम जीता के लो दुम गतो तनगर दुन गलो में किन अगम सिन आकाशवाणी ठानगर लो का तफा दो अरुणाचल प्रदेश का तवांग डिस्ट्रिक्ट लो आईसीआर रला फिशरीज डिपार्टमेंट का द रेनबो थ्रोट परमिंग अमने यो बड़के तक देगम ने कबा दुकुम ला मेमिन जीतो सगो तापम सो कसिबो गदे सगो रेलिंग डा गोरे गोई गत सिगिने यो ब आ पुक्री मोला जोकेन दग दे एगम ने मेंतम दो दो नलो लो निदुम छामनी गोब करतुत मुरबा बोलंग ओक किटफिल दोलु लोक इनकम तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर फोरम का दा डॉक्टर छलक लोवांगा लोमनाम बंगेन नमम ने मला कुमालेला कैंडल लाइट मार्च को जित आरुम रोरी ब रितु डॉक्टर लोवांग ब डीएन कॉलेज का पॉलिटिकल डिपार्टमेंट लो एसोसिएट प्रोफेसर ब रतु मेंटल 2019-20 अकोकम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर्स फोरम का वाइस चेयरपर्सन में दुबे नियमला तपातु आरएन 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स एम ने अहमदाबाद गुजरात लो रुदुब एम नम तदुला स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अला माय भारत नरो यूथ एम ने फिजिकली फिट तोला लेमोला दो तो का एम तो ओका सोगो नगेना स्पोर्ट्स एथलीट एक्टिविटी या कार्य एम ला मेंकेन जीतो मेट्रोलॉजिकल सेंटर इटानगर है वेस्ट का मेंग ईस्ट का मेंग कामले लोअर सिवनश्री पाके केशांग पापुम पारे चांगलांग तिरफ ओके लोंगडिंग हमने येलो अलर्ट जोन लो जिले तो सो को दौड़ दो में तीर्थ पर हृदय दो हमला मैंकेन जीतो क तने का दशरो का गलो मैंकेन आगो मैं अगा तने का दम लेकिन को तारों का मजाब हम दूला सिर्फ गलो पे को ये को अपने गौरव दूला कजगुनो गुमिन ये बो निर्म यम यमले सोरा गलो का दोयनी तो हम लोग का तकाला जो
1: श्रोताओं आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का कार्यक्रम। आप इनके आगे के कार्यक्रमों को अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर। आप इनके आगे के कार्यक्रमों को यहां पर सुन पाएंगे। और श्रोताओं आप हमें सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड घरेलू नुस्खे और आपके हेल्थ से जुड़ी काफी सारी टिप्स देते हैं। और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक सुपर फूड यानी अजवाइन के बारे में। अजवाइन यानी कैरम सीड्स, ये आपके हर किसी के किचन में, घर में आसानी से मिल जाती है। ये दिखने में बहुत ही छोटी सी है, पर हमारे सेहत के लिए काफी बड़े बड़े काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अजवाइन का इस्तेमाल जो है हमारे लगभग हर किसी के घर के नुस्खों में, घर के जो लोकल सामग्री होती है, इंग्रेडिएंट्स में पाए जाते हैं, हर डिश में पाई जाती है। क्योंकि अजवाइन जो है कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अजवाइन का स्वाद जो है जरा तीखा और हल्का कड़वा होता है, और इसकी सुगंध बड़ी तेज होती है, और आयुर्वेद ने इसे पेट का रखवाला कहा है।

श्रोता आइए जानते हैं कि अजवाइन इतना खास क्यों है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसमें मुख्य रूप से थाइमोल नामक तत्व पाया जाता है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पेट दर्द को शांत करता है। इतना ही नहीं श्रोताओं, इसके अलावा इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और ये तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, सूजन कम करने और संक्रमण से बचने में मदद करते हैं।

श्रोताओं, अजवाइन एक प्राकृतिक, सस्ता और असरदार घरेलू नुस्खा साबित हो सकता है अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो। जैसे सर्दियों के मौसम में जिनको सर्दी खांसी जल्दी हो जाती है, जिनके हाथ पैर जल्दी ठंडे पड़ते हैं और बहुत लंबे समय तक ठंडे पड़े रहते हैं और उन्हें जोड़ों का भी दर्द बड़ा सताता है, तब आप अगर नियमित रूप से अजवाइन का सेवन अगर करते रहे तो इन सारी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है आपको।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम बात कर रहे थे अजवाइन के फायदों के बारे में। आइए अब आपको बताते हैं कि अजवाइन का सेवन हम अपने अपने डेली डाइट में कैसे उसका सेवन कर सकते हैं। यदि आपको पेट दर्द या गैस की परेशानी हो तो ऐसे में आप एक चम्मच अजवाइन और थोड़ा काला नमक मिलाकर उसे चबाने से आपको तुरंत आराम मिल जाता है। या आप पच एसिडिटी एसिडिटी की अगर समस्या हो तो आप आधा चम्मच अजवाइन को एक गिलास में पानी में उबालकर पीने से आपको आराम मिलेगा। और साथ ही हींग और काला नमक के साथ अजवाइन का चूर्ण बनाकर एक चम्मच गुनगुने पानी में लेने से ये बहुत उपयोगी होता है आपके पेट की सभी समस्याओं के लिए।

अजवाइन पाउडर में नींबू का रस मिलाकर सुखाकर रखने से ये एक घरेलू दवा बन जाती है, जिसे जरूरत पड़ने पर आप इसका सेवन अपने हिसाब से कर सकते हैं। और साथ ही अजवाइन को पानी में कम से कम 15 से 20 मिनट उबाल ले, और उस गुनगुने पानी को अगर आप रोज उसका सेवन करते हैं तो आपको पेट की सभी समस्याओं से आपको आराम मिलेगी, सारी समस्याएं आपसे दूर रहेगी।

श्रोताओं, अजवाइन के फायदे के बारे में तो हमने बात कर ली है, पर अब ये ध्यान रहे कि अजवाइन का अत्यधिक यानी जरूरत से ज्यादा इसका सेवन करने से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे पेट में जलन होना, और अगर आपको पहले से अल्सर की प्रॉब्लम है तो ये अल्सर को बढ़ा भी सकता है। इसीलिए आप नियमित रूप से केयरफुल होकर इसका सेवन करें, और गर्भवती महिलाएं भी इसे बड़ी मात्रा में ना लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फायदे से ज्यादा आपको नुकसान दे सकती है आपकी अवस्था में। और लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारियां जिनको है, वो अगर अजवाइन का सेवन करने के बाद अगर पेट दर्द लगातार बना रहे तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

और सामग्री के बारे में जितनी जानकारी हमने आपको दी है वो केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है, और अधिक जानकारी के लिए आप अपनी डॉक्टर से जरूर बात करें, उसके बाद ही आप इन सारी चीजों का सेवन करिएगा। तो श्रोताओं, कार्यक्रम सुबह सवेरे में आज के लिए बस इतना ही। अब चलिए आगे आपको सुनवाते हैं कुछ हिंदी फिल्मी गीतों को।

0: यार।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम। अगर आप इनके आगे के कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन करिए आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। और श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट।

श्रोताओ, हर तारीख का अपना एक अलग महत्व होता है और आज यानी कि 13 मई का भी इतिहास में अपना अलग ही एक पहचान है, अलग ही एक महत्व है। तो आइए झांकते हैं इतिहास के पन्नों में और जानते हैं क्यों खास है आज का ये दिन।

आज ही के दिन यानी 13 मई 1830 को इक्वाडोर को आजादी मिली थी। 13 मई इक्वाडोर के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ बन गया था जब वो ग्रैंड कोलंबिया से अलग होकर एक स्वतंत्रता और संप्रभु गणराज्य बना था। और आज ही के दिन यानी 13 मई 1846 में यूएस कांग्रेस ने मेक्सिको के खिलाफ जंग का ऐलान किया था जिससे टेक्सास पर कब्जे को लेकर टेंशन बढ़ गई थी।

यह 1909 में आज ही के दिन मिलान में पहली गिरो डी इटालिया, जो इटली की एक बड़ी साइकिलिंग रेस है, वो शुरू हुई थी। ये रेस सुबह 2:53 पर मिलान के लोरेटो प्लेस से 127 सवारों में दौड़ शुरू की गई थी। इस पहले रेस के विनर थे इटली के लुई गाना।

यह 1940 में विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हाउस ऑफ कॉमन्स से अपना पहला भाषण दिया था आज ही के दिन। इस भाषण में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पंक्ति कही थी जो कुछ इस तरह से थे, मैं आपके सामने खून, मेहनत, आंसू और पसीने के अलावा कुछ और पेश नहीं कर सकता। और ये पंक्ति सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश प्रतिरोध का एक प्रतीक बन गया था। यह 1950 में आज के दिन पहली Formula 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस शुरू हुई थी। ये इंग्लैंड के सिल्वरस्टोन सर्किट में आयोजित की गई थी, जो एक पूर्व RAF हवाई अड्डा था, और इस रेस को ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के रूप में जाना जाता है। और अल्फा रोमियो के जुसेपे नीनो फरिनिना ने इस रेस को जीता था।

ईयर 1952 में आज ही के दिन यानी 13 मई को भारत की पार्लियामेंट में अपर हाउस यानी राज्यसभा में अपनी पहली मीटिंग करी थी। या 1981 में आज ही के दिन पॉप जॉन पॉल टू को वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स में मेहमत अली अगका ने गोली मारकर बुरी तरह घायल कर दिया था। इस हमले में पॉप गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 5 घंटे का ऑपरेशन हुआ और फिर उसके बाद वो बच गए और अगका को उम्र कैद की सजा मिली थी, लेकिन पॉप ने उन्हें माफ कर दिया।

यह 2005 में आज के दिन पूर्वी उज्बेकिस्तान में आंधीजन नरसंहार हुआ, जहां सरकारी सेना ने प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई, जिससे आंधीजन मसाकर के रूप में जाना जाता है। इसका कारण ये था कि स्थानीय व्यापारियों पर मुकदमे और गरीबी के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहे थे, जिस पर सरकार ने धमाकारी कार्रवाई की।

अच्छा तो आज ही के दिन यानी 13 मई को स्टीवी वंडर जो मशहूर अमेरिकी सिंगर सॉन्गराइटर है उनका जन्म हुआ था। और साथ ही आज ही के दिन आर के नारायण मशहूर भारतीय लेखक का निधन आज ही के दिन हुआ था।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम। इनका आगे का कार्यक्रम जारी रहेगा हमारे आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर। आप इस चैनल पर ट्यून इन करके इनके आगे के कार्यक्रमों को भी सुन पाएंगे। और श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz पर।

श्रोताओं, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है सदाबहार। और इस कार्यक्रम में हम आज आपको देंगे मौसम की जानकारी ईटानगर और बाकी अरुणाचल के बारे में।

आई श्रोताओ, जानते हैं कैसा रहेगा आज के ईटानगर का मौसम का हाल। आज ईटानगर में बारिश और गरज का दिन रहेगा। सुबह हल्की बारिश से शुरू होकर दोपहर बाद तेज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो उच्चतम तापमान रहेगा 27 डिग्री और न्यूनतम रहेगा 22 डिग्री। सुबह 22 डिग्री सेल्सियस रहेगी और हल्की बरसात हो सकती है। बारिश की संभावना है 78%। और आर्द्रता की बात करें तो ये 78% रहेगा और वायु गुणवत्ता 7%। आइए जानते हैं कैसा रहेगा मौसम का हाल पूर्वी अरुणाचल में। आज पूर्वी अरुणाचल में गरज के साथ बारिश का दिन रहेगा। सुबह बादल रहेंगे और 8 बजे के बाद से गरज के साथ छिटपुट बारिश शुरू होकर दोपहर में तेज हो सकती है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम

अधिकतम रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता रहेगी 80 डिग्री सेल्सियस, वायु गुणवत्ता रहेगी 90 डिग्री और सुबह 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा आंशिक बादल और बारिश की संभावना रहेगी 24 डिग्री सेल्सियस। पश्चिम अरुणाचल में जानते हैं मौसम का हाल। आज पश्चिम अरुणाचल में भी बादल छाए रहेंगे और गरज की संभावना है। तापमान की बात करते हैं, उच्चतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता रहेगी 80 डिग्री और वायु गुणवत्ता रहेगी 7%। और आज छाता लेकर निकले घर से, दोपहर 11 बजे के बाद तेज गरज और बारिश की संभावना बहुत ज्यादा है। पहाड़ी रास्तों पर फिसलन और भूस्खलन का ध्यान रखिएगा, ये पश्चिमी अरुणाचल के लिए। तो श्रोताओं, हमारे आज के लिए हमारा वेदर अपडेट्स इतना रहेगा। आगे हम आपको जानकारी देंगे हमारे लोकल डेली द अरुणाचल टाइम्स से कुछ हेडलाइंस के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपको ये गीत सुनवाना चाहते हैं।

आइए श्वेता, अब रुख करते हैं हमारे लोकल डेली दी अरुणाचल टाइम्स की ओर और आपको जानकारी देते हैं कुछ न्यूज हेडलाइंस की। 3 मई को हुआ नीट 2026 एग्जाम मंगलवार को पेपर लीक के आरोपों के बीच कैंसिल कर दिया गया। सरकार के अनियमितताओं की पूरी जांच करने के बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए एग्जाम कराती है, एनटीए ने कहा कि नई तारीखें अगले 7 से 10 दिनों में बताई जाएंगी। एग्जाम कैंसिल होने से देश भर में मेडिकल की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स में गुस्सा फैल गया है। स्टूडेंट्स ने एनटीए की काबिलियत पर सवाल उठाए और मांग की कि एग्जाम एम्स दिल्ली से कराया जाए। एक्टिविस्ट और ईस्ट कामिंग सोशल वेलफेयर एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के भारी दबाव के आगे झुकते हुए राज्य सरकार ने कथित तौर पर लादा सरली फ्रंटियर हाईवे जमीन मुआवजा घोटाले में 114 करोड़ रुपए की का रिकवरी ऑर्डर जारी कर दिया है। लैंड डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया है कि फाइनल अप्रूवल के लिए चीफ सेक्रेटरी के पास भेज दी गई है। हालांकि डिपार्टमेंट ने वसूल की जाने वाली कुल रकम की सही आंकड़े के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया है। ईस्ट कामेंग और कुरुंग कुमे जिलों में लादा सरली फ्रंटियर हाईवे एक बड़े जमीन मुआवजे घोटाले से जूझ रहा है, जिसमें लगभग 100 से 130 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने मंगलवार को दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की एक महिला पर हुए कथित हमले पर चिंता जताई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आसाम की महिला के साथ एक हुए कथित शारीरिक और नस्लीय उत्पीड़न की निंदा की। संगमा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हिंसा और भेदभाव की ऐसी बार बार होने वाली घटनाओं को अलग थलग घटनाएं कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है और इसके लिए कानून के तहत सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा कि दक्षिण पूर्व दिल्ली के नेहरू प्लेस में एक होटल के बाहर कुछ लोगों ने 2 महिलाओं को के साथ छेड़छाड़ और हमला किया। साथ ही इस घटना में शामिल सभी 4 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है।

हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को लगातार दूसरी बार आसाम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। चार एमएलए बीजेपी के रमेश्वर तेली और अजंता नियोग, एजीपी के अतुल बोरा और बीपीएफ के चरण बोरा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद

आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा इलाके के वेटनरी ग्राउंड में हुए एक बड़े समारोह में शर्मा और चार विधायकों को पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल, पवित्र मार्गरीटा, बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद थे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राज्य में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनने का प्रतीक है। राज्य के फॉरेस्ट अधिकारियों को 11 और 12 मई को लोअर दिबांग वैली जिले में हुए दो दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में सांपों को संभालने की ट्रेनिंग दी गई। डीएफओ मीतो रूमी ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि ट्रेनिंग में सांपों की पहचान से लेकर सुरक्षित तरीके से संभालने की तकनीक और इंसानी तरीके से दूसरी जगह ले जाने जैसे टॉपिक शामिल थे, ताकि स्थानीय जहरीले और बिना जहरीले सांपों की प्रजातियों और सांप के काटने पर फर्स्ट एड के तरीकों के बारे में समझ बढ़ सके। ट्रेनिंग प्रोग्राम को कर्नाटक के स्नेक स्पेशलिस्ट गेरी मार्टिन और हापोली फॉरेस्ट डिवीजन के आरएफओ किमे राम्बिया ने लीड किया। इसमें हिस्सा लेने वाले में दाइंग इरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग लोहित और म्याओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नामदफा, कामलांग और पाके टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रोइंग, ईटानगर बायोलॉजिकल पार्क और एनजीओ आत्री के अधिकारी शामिल थे।

अरुणाचल स्विमिंग एसोसिएशन की सेक्रेटरी जनरल तानिया आगू और इसके ज्वाइंट सेक्रेटरी पिंकू बासर ने मंगलवार को स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर केंतो जिनी से मुलाकात की और उन्हें सांगे लादेन स्पोर्ट्स एकेडमी में ओलंपिक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल के ठीक से काम न करने की वजह से राज्य में स्विमिंग करने वालों को हो रही मुश्किलों के बारे में बताया। मीटिंग के दौरान एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि स्विमिंग पूल के ठीक से काम न करने की वजह से ट्रेनिंग एक्टिविटी, कोचिंग प्रोग्राम और स्टेट और नेशनल लेवल के कंपटीशन के लिए उभरते हुए स्विमर्स की तैयारी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। डेलीगेशन ने ये भी चिंता जताई कि स्विमिंग फैसिलिटी से की ठीक से काम न करने की वजह से पूरे राज्य के स्विमर्स पर बुरा असर पड़ा है। और मंगलवार को आईजी पार्क में आईसीआरडीसी के कैंप ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई एक रिव्यू मीटिंग में मॉनसून से जुड़ी आपदा की तैयारी की स्ट्रेटजी और सावधानी के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। मीटिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी और डिजास्टर मैनेजमेंट के स्टेक होल्डर शामिल हुए। मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए आईसीआर के डिप्टी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन तोको बाबू ने सभी डिपार्टमेंट के बीच मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया और संबंधित अधिकारियों को काफी मैन पावर, मशीनरी और जरूरी रिसोर्सेस के साथ तैयार रहने का निर्देश दिया। डीसी ने सभी संबंधित लोगों को गैर कानूनी मिट्टी काटने की एक्टिविटी और नालों के ऊपर गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन की तुरंत रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है।

श्वेता, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार। अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात तथा मॉर्निंग न्यूज और शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: فرحت ناز. और अब मुख्य समाचार. तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज. राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज. अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए. केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की. समय से पहले दस्तक देगा मानसून. और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया. अब समाचार विस्तार से. तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है.
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वासमत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं. सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है. इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई. पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है. वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा. वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है. चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर.
0: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव N मुरुगंदम और वित्त सचिव T उदय चंद्रन शामिल हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव P शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है. अखिल भारतीय NR कांग्रेस के नेता N रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल K कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा. N रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. क्षेत्रवासी N रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा.

0: शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू

0: उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर है। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती

0: सियासी समझ। संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अनेक कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPIM and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has reshuffled IAS officers in the state government, including former Chief Secretary N. Muruganandam and Finance Secretary T. Uday Chandran. The appointment of astrologer Ricky Radhan Pandit as officer on special duty and political wing secretary in the Chief Minister's office has triggered criticism from alliance partners. Congress MPs Sasikant Senthil and Jyoti Mani questioned the appointment, while CPIM State Secretary P. Shanmugam said the move went against the government's responsibility to promote scientific thinking. VCK General Secretary D. Ravi Kumar appointment as unacceptable in a secular government and urged reconsideration. All India NR Congress leader N. Rangasamy will be sworn in as the Chief Minister of Puducherry today. At a ceremony to be held at the Lok Nivas, Lieutenant Governor K. Kailashanathan will administer the oath.

0: श्रोताओ, अरुण एफएम पर अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो ईटानगर। तो आइए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को।
1: हेलो ईटानगर।

प्यारे श्रोताओ, सोशल मीडिया जो है आज के समय में संवाद और सूचना का सबसे तेज जरिया बन गया है। सोशल मीडिया पर आपका एक पोस्ट कुछ ही सेकंड्स में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, लेकिन साथ ही उसी तेज गति से जोखिम भी बढ़ा रहा है ये सोशल मीडिया। जी हाँ दोस्तों, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जो एक तरीके के सिटीजन जर्नलिज्म भी कर रहे हैं, इनके कंटेंट जो है ज्यादातर संपादक या फिल्टर नहीं रहता है इनमें, तो ये कई बार चीजों को गलत तरीके से दिखाने का माध्यम भी बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही एक तरीके की जर्नलिज्म होती है जिसे कहा जाता है विजिलांटे जर्नलिज्म। इसमें आम लोग जो है, जो प्रोफेशनल मीडिया नहीं होते हैं, वो रेगुलर लोग वो खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच करते हैं और न्याय लागू करने वाले काम करते हैं। जी हाँ, वो खुद ही इन्वेस्टिगेटर, खुद ही मीडिया पर्सन और पुलिस भी बन जाते हैं, और जो लोग

बुरे काम करते हैं उनको सजा देने की कोशिश भी करते हैं वो। ये लोग जो होते हैं ज्यादातर ऐसे कंटेंट डालने वाले लोग जो है गुस्से से भरे हुए होते हैं और वो सोशल मीडिया पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही कंटेंट डाल देते हैं, जिनमें क्या होता है कि वो लोग जो गलत काम कर रहे हैं उनको कैप्चर करते हैं और सजा देने के लिए उनके ऊपर सर्विलेंस करते हैं या नाम लेकर शर्मिंदा करने जैसे तरीकों का इस्तेमाल भी करते हैं। श्रोताओ, ये सारी चीजें तो कई बार बहुत सारी चीजों को लोगों के सामने लेकर आती तो है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अक्सर ऐसा करने से रिपोर्टिंग और हरासमेंट में पब्लिक हरासमेंट के बीच की लाइन जो है वो अक्सर धुंधला कर देता है।

श्रोताओ, अगर आपको याद होगा 2015 में सोशल मीडिया पर एक केस वायरल हुई थी जसलीन कौर की। उन्होंने सर्वजीत सिंह नाम के एक इंसान पर एक्यूजेशन डाला कि इस व्यक्ति ने मुझे सेक्सुअली हरास किया है। जसलीन ने अपने फोन से सर्वजीत सिंह की एक वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया। ऐसी ही एक और स्टोरी आई थी इसी साल जनवरी में, जहां केरला की एक व्लॉगर शिमजिता मुस्तफा ने अपने फोन से बस में एक वीडियो बनाई थी, जिसमें उन्होंने एक आदमी की वीडियो बनाई जो उन्हें छेड़ रहा है, ऐसा कहकर उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट कर दिया था। फिर बहुत सारे लोग इन वीडियोस पर बहुत बुरे कमेंट्स करते हैं और उन लड़कों को जिन पर एक्यूजेशन डाला गया है उनके बारे में उनका नाम, उनके वर्क प्लेस, उनके एड्रेस, फैमिली तक के डिटेल्स सोशल मीडिया पर लोग खोज कर निकालते हैं और डाल दिए जाते हैं और उन्हें हैरेस किया जाता है। और व्लॉगर सिमजिता मुस्तफा ने जिन पर एक्यूजेशन डाला था उस इंसान ने इस बस के इंसिडेंट के 2 दिन बाद ही अपनी जान ले ली थी। और अंत में हम सबको पता चला कि ये जो लड़के जो थे जिन पर एक्यूजेशन डाला गया था वो बेकसूर थे, उन पर गलत इल्जाम लगाए गए थे, बाद में उन्होंने क्लियर करी कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो प्यारे श्रोता, इन सारे मामलों से हमें ये पता चलता है कि हमारा फोन जो है वो एक वेपन बन चुका है, जिसका अगर सही इस्तेमाल करें तो बहुत खूब, वरना सिर्फ कंटेंट और व्यूज के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। विजिलेंट जर्नलिज्म ने बहुत सारे मामलों में कई बड़े खुलासे भी किए हैं, लेकिन हमें एज एन ऑडियंस हमेशा सही इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना चाहिए। तो अगली बार आप जब ऐसे किसी वीडियो से रूबरू हो तो आप उस पर कमेंट या शेयर करने से पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये लोग जो है, ज्यादातर लोग जो है, ये कंटेंट के लिए, व्यूज के लिए इस तरह के वीडियोस डालते रहेंगे बिना पूरी तहकीकात किए, इस तरह के व्यूज डालते हैं जिसका क्या है, दूसरे लोगों पर बुरा असर पड़ता है।

श्रोताओं, आइए विजिलेंटे जर्नलिज्म की डेफिनेशन जान लेते हैं। ये कुछ कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो लोग जब गलत कामों को सामने लाने के लिए एक साथ पुलिस और मीडिया की भूमिका निभाते हैं। अक्सर तब होता है जब उन्हें लगता है कि ऑफिशियल सिस्टम जो है काफी नहीं होता है। इसके मॉडर्न रूपों में ऑनलाइन हाउंडिंग या स्टिंग ऑपरेशन जैसे तरीके हैं, जिनमें बातचीत रिकॉर्ड करते हैं, स्टिंग ऑपरेशन चलाया जाता है, या नेमिंग एंड शेमिंग के लिए ऑनलाइन भीड़ को इकट्ठा किया जाता है। ये करने की जरूरत क्यों आन पड़ती है? ये तब होता है जब अक्सर लोकल गवर्नेंस में भरोसे की कमी या स्लो जुडिशियल सिस्टम को बायपास करने की इच्छा से पैदा होता है। और इसके फायदे, अगर फायदे की बात करें तो जब फॉर्मल जस्टिस सिस्टम फेल हो जाते हैं तो ये खालीपन को भर सकता है और जरूरतमंदों को आवाज दे सकता है, लेकिन इसमें नुकसान भी उतना ही बड़ा होता है। भीड़ की हिंसा भड़काने, प्राइवेसी का उल्लंघन करने और बेगुनाह लोगों को सजा देने का खतरा भी होता है। तो दोस्तों, हर चीजों का अपना प्रोज एंड कॉन्स तो होता है, बिल्कुल होता है, इसके भी है। तो ये बहुत सारे मामलों में इसने बहुत सारे विजिलेंट जर्नलिज्म करने वाले लोग, कंटेंट डालने वाले लोगों ने बहुत मदद करी है, पर हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए। जब भी ऐसे वीडियो देखिए तो हम आंख बंद करके सीधा हम भी कूद नहीं जाएंगे उन पर अलग गलत गलत चीजें बोलने के लिए। हमें पूरी इन्वेस्टिगेशन का वेट जरूर करना पड़ेगा दोस्तों। तो श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो ईटानगर में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ अलग टॉपिक के साथ। श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और गीत।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो ईटानगर। अब आप सुन पाएंगे दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रही हैं। विधानसभा में अब टीवीके पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव पार्टी के पलिनस्वामी के नेतृत्व वाली गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्षेत्रवासी एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कल हैदराबाद स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन में फील द जेल कार्यक्रम और जेल संग्रह का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने कहा कि जेलों को सुधार केंद्रों में बदला जाना चाहिए। जेल संग्रहालय में तेलंगाना की जेलों के इतिहास, निजाम काल की वस्तुओं और नागार्जुन सागर बांध के निर्माण में कैदियों की भूमिका को दर्शाया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं।

भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। अगले 24 घंटे में इसके और अधिक प्रभावी होने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तो शुरू करते हैं हमारे इस पहले गपशप से। मौजूदा समय में अक्षय कुमार का नाम हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला की सफलता को लेकर चर्चा में बना हुआ है। इसके अलावा वेलकम फिल्म निर्देशक अनीस बज़मी संग आने वाली अगली फिल्म को लेकर भी अक्षय कुमार बीते समय से सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बीच मेकर्स की तरफ से अक्षय कुमार की इस अनटाइटल्ड अपकमिंग फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। डायरेक्टर अनीस बज़मी की वेलकम और सिंह इज किंग जैसी फिल्मों में अक्षय कुमार बतौर लीड एक्टर काम कर चुके हैं। उनकी ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई है। अब इन दोनों की जोड़ी लंबे समय के बाद वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है और अनटाइटल्ड मूवी की रिलीज डेट भी फाइनल हो गई है। अक्षय कुमार और अनीस की इस मूवी के निर्माता साउथ सिनेमा के मशहूर फिल्म मेकर दिल राजू है और उनके प्रोडक्शन हाउस श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इस अपकमिंग फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा करी है। ट्वीट में लिखा गया है कि अक्षय कुमार, अनीस बज़मी और दिल राजू की टिकरी के साथ बनने वाली फिल्म 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी और फिल्म से जुड़ी अन्य जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी। बेशक निर्देशक अनीस बज़मी संग अक्षय कुमार की अगली फिल्म का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन इसकी कास्ट की जानकारी सामने आ गई है। इसमें अभिनेत्री विद्या बालन और राशि खन्ना का नाम शामिल है। हाल ही में इस मूवी की शूटिंग का केरल शेड्यूल खत्म हो गया है, जिसकी पोस्ट अक्षय ने सोशल मीडिया पर शेयर की। इन दोनों एक्ट्रेसेस के साथ वो नजर आए थे।

अभिनेत्री मौनी रॉय के पति सूरज नाम्बियार एक्ट्रेस से अलगाव की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुके हैं। सूरज नाम्बियार और मौनी रॉय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर न सिर्फ एक दूसरे को अनफॉलो किया है, बल्कि एक्ट्रेस के पति ने उनके साथ अपनी शादी की सारी तस्वीरें भी डिलीट कर दी है। एक तरफ जहां सूरज नाम्बियार मौनी रॉय संग सेपरेशन की खबरों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई यूजर्स इंटरनेट पर उनके प्रोफेशन से लेकर उनकी नेटवर्क के बारे में सर्च कर रहे हैं। मौनी रॉय के पति सूरज नाम्बियार दुबई बेस्ड बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट बैंकर है जो बेंगलुरु से ताल्लुक रखते हैं। एक मलयाली फैमिली में पले बड़े सूरज अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखने में ज्यादा यकीन करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सूरज नाम्बियार ने यूएई के कैपिटल मार्केट सेक्टर में काम किया है। वो इतने सालों से कई बड़े बिजनेस से जुड़े हुए हैं।

लाइमलाइन से दूर रहने वाले सूरज नामव्यार उस दौरान चर्चा में आए थे जब उन्होंने एक्ट्रेस मोनी रॉय से शादी की थी। हालांकि शादी के एक साल तक वो लाइमलाइट में रहे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने मीडिया की अटेंशन से खुद को दूर कर लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सूरज नामव्यार की नेटवर्क तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए है, वहीं उनकी पत्नी मोनी रॉय की नेटवर्क 40 से 41 करोड़ रुपए के आसपास है। सूरज नामव्यार और मोनी रॉय पति पत्नी होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। उन्होंने साल 2022 में अल्टीमेट गुरु नाम का बिजनेस शुरू किया था जो ग्लोबल स्तर पर एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा सूरज मोनी रॉय के हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में भी जुड़े हुए हैं। साल 2023 में दोनों ने मिलकर मुंबई में मोनी रॉय के रेस्टोरेंट की को भी लॉन्च और एक्सटेंड किया था। अलग होने और तलाक लेने की खबरों पर अभी तक सूरज नाब्यार या मोनी रॉय की तरफ से किसी भी तरह का आधिकारिक रिएक्शन सामने नहीं आया है। तो श्रोताओं, चलिए इसी के साथ ही आपको हम सुनवाते हैं मोनी रॉय पर फिल्माए कुछ गीतों को।

श्रोताओं, गपशप जारी है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। आइए जानते हैं अगली खबर। हनी सिंह और नौरा फतेही का नया गाना बॉडी रोल हाल ही में रिलीज हुआ है। ये गाना यूट्यूब पर टॉप 16 में ट्रेंड भी कर रहा है। हालांकि रिलीज के कुछ ही दिन बाद ही नौरा फतेही के इस गाने की कोरियोग्राफी से लेकर इसके विजुअल्स और एक एक सीन को कॉपी करने का आरोप लग गया है। नेटिजन्स ने तुरंत इस बात का पता लगा लिया है कि इस गाने के विजुअल्स को हॉलीवुड के किस सीरीज से चुराया गया है। इंटरनेट यूजर्स ने दावा किया है कि इस म्यूजिक वीडियो बॉडी रोल और साल 2022 में नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हुई सीरीज लव डेथ एंड रोबोट्स के पॉपुलर एपिसोड जिबारो के बीच काफी समानताएं हैं। यूजर्स का आरोप है कि हनी सिंह और नौरा फतेही के गाने का एक एक सीन वहीं से कॉपी किया गया है। इस नए गाने पर खुलकर इंटरनेट ने अपनी राय रखी है और इसे प्रेरणा नहीं बल्कि पूरी की पूरी नकल बताया है। अगर आपने इस गाने के विजुअल्स देखे होंगे तो इसमें मध्ययुगीन शैली के कपड़े पहने एक व्यक्ति जंगल में जगमगाती हुई झील की ओर दौड़ता है। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुकता है तो उसके सामने नदी से नौरा फतेही बाहर निकलती है। नौरा ने सुनहरे रंग के कपड़े पहने हैं और सिर पर एक भारी हेडगियर लगाया हुआ है। वो एकदम अलौकिक जलपरी की तरह लग रही है और वो शख्स को मोहित करती है और अपनी गुफा जैसी

फ्रांस के कांस सिटी में कल यानी 12 मई से कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो गया है। 23 मई 2024 तक चलने वाले इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस बार बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को लेकर चर्चा का बाजार काफी गर्म है। ऐसा पहली बार हुआ है जब आलिया ने कांस में शिरकत की है। इस दौरान 79th कांस फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक सामने आ गया है, जिसकी लेटेस्ट तस्वीरें इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है। अगर गौर किया जाए आलिया भट्ट के लुक की ओर, तो इस लुक को तैयार किया है उनके ड्रेस को तैयार किया है फैशन डिजाइनर यश पाटिल ने, और स्टाइलिस्ट के तौर पर काम किया है रिया कपूर ने। इसके अलावा आलिया भट्ट की अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी फिल्म स्पाई थ्रिलर अल्फा और लव एंड वॉर मूवी के नाम शामिल है। अल्फा को 10 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा, जबकि लव एंड वॉर की रिलीज डेट सामने आना बाकी है।

अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म चांद मेरा दिल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। करीब 3 मिनट के इस ट्रेलर को देख जहां इंटरनेट यूजर्स को सैयारा की याद आ रही है, वहीं फिल्म में लक्ष्य और अनन्या की केमिस्ट्री से लेकर डायलॉग्स तक की खूब तारीफ हो रही है। यह फिल्म इसी महीने 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में बैड्स ऑफ बॉलीवुड और किल फिल्म से फेमस हुए लक्ष्य के साथ अनन्या पांडे की जोड़ी में एक ताजगी है। कहानी में प्यार के साथ ट्रेजेडी है जो सिर्फ रूमानी एहसास नहीं बल्कि इश्क के उस मुकाम को भी दिखाती है जहां इंसान की गलतियां सब कुछ तहस नहस कर देती है। थर्मल प्रोडक्शन के बैनर तले बनी ये फिल्म बड़े पर्दे पर रोमांस की एक ताजा लहर लेकर आई है। कहना होगा कि करीब 3 मिनट के इस ट्रेलर में वो सब कुछ है जो इस रोमांटिक फिल्म के लिए उत्सुकता बढ़ाती है। इस फिल्म के ट्रेलर में जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है अनन्या पांडे और लक्ष्य के बीच की केमिस्ट्री। प्यार तरफ और भावनाओं की कोमलता को दोनों सितारों ने पूरी ईमानदारी से निभाया है। हमें एक ऐसे रिश्ते की झलक मिलती है जो सिर्फ रोमांस तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें भावनात्मक टकराव और दोनों की खुद की पहचान की भी झलक है। चांद मेरा दिल फिल्म जो है तब से सुर्खियों में है जब इसका पहला लुक पोस्टर रिलीज हुआ था। इसके बाद आए टीजर और गानों ने पर्दे पर रोमांस देखने की चाह रखने वाले दर्शकों में उत्सुकता जगाई है। अब जब ट्रेलर रिलीज हुआ है तो यूजर्स इसमें लक्ष्य और अनन्या की तारीफ कर रहे हैं। यही नहीं, इसकी तुलना सैयारा से भी की जा रही है जिसने रोमांटिक फिल्मों की सफलता और दर्शकों को रिझाने में एक नया बेंचमार्क सेट किया है। चांद मेरा दिल को करण जौहर, आदर पूनावाला, अपूर्वा मेहता, सोमेन मिश्रा और मरिचके डिसूजा ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी के अलावा आस्था सिंह, प्रथम राठौर और एल्विस जोस भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। तो आइए दोस्तों आपको सुनवाते हैं।

श्वेता, आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी गपशप, और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी ने आज पुद्दुचेरी की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में ये 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुद्दुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीति में नाटकीय मोड़ आया, जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नेट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई थी। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। वैश्विक ईंधन में कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के बेड़े में 50% वाहनों की कमी का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या को कम कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावित हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने के इच्छुक लोगों से 19 मई से पहले आवेदन करने का आग्रह किया है। इस यात्रा के लिए पंजीकरण जल्द ही बंद होने वाले हैं। इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया है। सोशल मीडिया पर

संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों से देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: table with a compelling all-round show in Ahmedabad last night. Chasing the target of 169 runs, Sunrisers Hyderabad were bundled out for just 86 runs in 14.5 overs. In today's fixture, Royal Challengers Bengaluru will take on Kolkata Knight Riders in Raipur. The match will begin at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: चलो श्रोताओं, देर न करते हुए शुरू करते हैं आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम यानी कि कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड का।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर। जी हाँ दोस्तों, SMS के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके SMS का इंतजार रहेगा।
0: प्यारे श्रोताओं, चलिए शुरू करते हैं हमारे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड का हमारे पहले मैसेज से। हमारा पहला मैसेज हमें भेजते हैं रमेश पात्रो, रुनू पात्रो और लकी, जो रहते हैं गोलाघाट आसाम में, और वो सुनना चाहते हैं गीत मेरी मोहब्बत जवान रहेगी फिल्म जानवर से। और इस गाने को हमारे ये लिसनर्स जो है वो डेडिकेट करते हैं अपने कुछ दोस्तों को। मैं उन सारे दोस्तों का नाम लेना चाहूंगी एक बार। पाइकोन मुंडा, अमोल बासुमातरी, विमोल बासुमातरी, जोगेंदर रोंगपी, सोनाली इंगतिपी और अंजलि बासुमातरी, ये सारे उनके फ्रेंड्स हैं जिन्हें ये गीत डेडिकेट करना चाहते हैं। तो हमारे इन सारे प्यारे लिसनर्स के लिए हम आपके लिए प्ले करते हैं आपका ये पसंदीदा गीत।

आइए श्रोताओ, बढ़ते हैं हमारे अगले मैसेज की ओर। ये मैसेज हमें भेजते हैं तोन सियोम, जो रहते हैं सेंकी व्यू ईटानगर में। और तोन सियोम जी सुनना चाहते हैं गीत एक सफर, सोनू लेम का गाया हुआ गीत एक सफर। तो चलिए तोन सियोम जी, आपके लिए हम देर न करते हुए आपके लिए प्ले करते हैं आपका पसंदीदा गीत।

प्यारे श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। तो चलिए लेते हैं हमारा अगला मैसेज। ये अगला मैसेज हमें भेजते हैं राजू दास, जो रहते हैं ईटानगर में, और वो सुनना चाहते हैं गीत आ कहीं दूर चले जाए। तो चलिए राजू जी, आपके लिए हम प्ले करते हैं आपका ये रिक्वेस्टेड गीत।

कार्यक्रम रेडियो निमाड पे हमें हमारा अगला मैसेज भेजते हैं नानी तागो, जो रहते हैं निरजुली में, निरजुली अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, और वो सुनना चाहते हैं गीत सावली सलोनी। तो चलिए तागो जी, देर ना करते हुए हम आपको सुनवाते हैं आपका ये रिक्वेस्टेड सॉन्ग।

श्रोताओ आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हमारा अगला मैसेज। ये अगला मैसेज हमें भेजते हैं रीता बरुआ जी, जो रहती है दिल्ली में, और वो सुनना चाहते हैं जाल फिल्म का ये गीत, ये रात ये चांदनी। तो चलिए रीता जी, हम आपके लिए पेश करते हैं आपका पसंदीदा गीत।

श्रोताओं आप बने हुए हैं हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। तो चलिए लेते हैं हमारा अगला मैसेज। ये अगला मैसेज हमें भेजते हैं आर तेरोन जो रहते हैं कार्बी अंगलोंग आसाम में और वो सुनना चाहते हैं गीत राजा को रानी से। तो चलिए तेरोन जी, देर न करते हुए आपके लिए हम प्ले करते हैं ये आपका रिक्वेस्टेड सॉन्ग।

प्यारे श्रोताओं, आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और श्रोताओं, आप इस वक्त सुन रहे हैं आप सभी के फेवरेट कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हमारा अगला मैसेज। ये मैसेज हमें भेजते हैं तेंजिंग लामू, जो रहते हैं तवांग में, और वो सुनना चाहते हैं गीत अच्छी लगती हो फिल्म कुछ ना कहो से। तो लामू जी, चलिए देर न करते हुए हम आपको सुनवाते हैं आपका ये रिक्वेस्टेड सॉन्ग।

श्रोताओं, चलिए लेते हैं हम अपना अगला मैसेज। ये मैसेज हमें भेजते हैं बीदा हागे, जो रहते हैं जीरो में, और वो सुनना चाहते हैं फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे से ये गीत बिंदिया चमके। तो चलिए बीदा जी, आपके लिए और हमारे सारे लिसनर्स के लिए हम प्ले करते हैं आपका ये रिक्वेस्ट किया हुआ सॉन्ग।

तो प्यारे श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही हमें आप सभी को अलविदा करना पड़ेगा। और आप सभी का, हमारे सारे लिसनर्स का जिन्होंने हमें मैसेज किया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमेशा जुड़ने के लिए, हमें हमेशा मैसेजेस भेजते रहने के लिए। और श्रोता, आपसे ही थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। उसके तुरंत बाद हमारे दूसरे ट्रांसमिशन के लिए आपके साथ जुड़ेंगे आरजे कनिक। तो श्रोताओ, आप मुझे यानी आपकी रेडियो साथी बामिन सुम्पी को और साथ ही हमारे प्रसारण निष्पादक गोपाल राय और तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रह्मा को आप दीजिए इजाजत। हम कल फिर मिलेंगे आपसे इसी समय इसी वक्त। आप कहीं जाइएगा नहीं और सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: ना रंगासामी கடவுளின் பெயரால் உறுதி கூறுதாவது நான் நேர்முகமாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ ஒருவருக்கோ அல்லது பலருக்கோ இந்திய ஒன்றியத்தின் புதுச்சேரி ஆட்சி பரப்பின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் என் கவனத்திற்கு கொண்டுவரப்படும் அல்லது எனக்கு தெரிய வரும் எந்த செய்தியையும் மேற்கூறிய முதலமைச்சர் என்ற வகையில் என்னுடைய கடமைகளை முறையாக ஆற்றுவதற்கு தேவைப்பட்டாரின்றி தெரிவிக்கவோ அல்லது வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன்.
0: अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मल्लाडी कृष्णराव और भाजपा के ए नमस्सीवयम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा नेता अध्यक्ष वीपी रामलिंगम अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वित्री कड़गम टीवीके के सरकार को विधानसभा में आज बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वासमत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे आज चिली के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोपहर बाद वे दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शाम को डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से भी मिलेंगे। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई थी। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार से पहले मामूली रूप से बढ़त नजर आई और फिर इसमें गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 75 अंक की अधिक की वृद्धि के साथ खुला और बाद में 180 अंक गिरकर 74,360 पर आ गया। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 24,350 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar.

0: थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम हो।
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओं दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, इससे पहले आप सुन रहे थे आपके चहीते आरजे बामिन सोमपिन के साथ हमारी पहली प्रसारण सभा के कार्यक्रम को। और अब मैं आपकी रेडियो साथ ही आरजे पूनम आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत से मजेदार कार्यक्रमों को आपके लिए हमारी दूसरी प्रसारण सभा में। इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक एल ताली तथा तकनीकी अभियंता नंद कुमार। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है फिल्मी लहर। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन गीत के साथ, जिसे गाया है सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन ने। इस बेहतरीन गीत को लिया गया है फिल्म परदेश से। इसके बोल हैं ये दिल दीवाना। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी श्रोताओं के साथ।

0: श्रोतम दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी लहर का। श्रोतम दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो हमें जरूर लिख भेजिए, या फिर आप चाहते हैं कि हमारे किसी भी कार्यक्रम में किसी भी तरह का सुधार आए या और एक्साइटमेंट चाहिए, किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट चाहिए, तो आप लिखकर भेज सकते हैं। हमें आपके सजेशंस का इंतजार रहेगा। आप हमें अपने सुझाव लिखकर भेजें इस नंबर पर 9436887808 पे। तो श्रोताओं, उम्मीद करते हैं आप हमें जरूर लिखेंगे अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत, जो लिया गया है फिल्म मोहब्बतें से। इस बेहतरीन फिल्म का ये बेहतरीन गीत, जिसके बोल हैं आंखें खुली हो या हो बंद, को सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अपनी रेडियो साथ ही आरजे पूनम के साथ।
1: लड़की थी दीवानी सी, शर्मा के चुपके कुछ कहना था शायद, जब भी मिलती थी मुझसे

श्रोतम दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी लहर। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि अगर चाहते हैं हमारे कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाया जाए, आप किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए इस नंबर पर 9436887808 पर। हम चाहते हैं कि आप हमें जरूर मैसेज कीजिए। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो हमारी तारीफों के पुल जरूर बांध सकते हैं, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो हमें जरूर लिख भेजिए ताकि हम आपके अनुभव को और भी बेहतर बना सकें। जी हाँ श्रोताओं, दोस्तों हमें आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनाते हैं फिल्म लापता लेडीज से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने। गीत के बोल हैं सजनी। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: श्रोताओं दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी लहर, या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, जो है पाश्चात्य गीत यानी वेस्टर्न मेलोडीज।
1: वेलकम बैक एवरीवन टू द वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम ओनली ऑन आकाशवाणी ईटानगर। आई एम सैम योर होस्ट फॉर द डे। टुडेज़ सेट इज मोर पर्सनल। चॉइसेस, कॉन्सिक्वेंसेस, लव दैट पुल्स यू।

0: That is all for today, listeners. I hope you all enjoyed the songs today and that you'll catch us back tomorrow only on Akashvani Itanagar. This was your host Sam, signing off for the day. Goodbye.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। यह आकाशवाणी ईटानगर कारून FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल कवयित्री कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडे कृष्ण राव और भाजपा के ए नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर

विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नेट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सत्संगी
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

श्रोताओं दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की तरफ जिसका नाम है नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। तो चलिए आपको सुनाते हैं बहुत ही बेहतरीन गीत जिसे गाया है गुरु रंधावा ने, जो लिया गया है फिल्म नवाबजादे से, जिसके बोल हैं हाई रेटेड गबरू। तो चलिए आनंद लेते हैं इस बेहतरीन गीत का अरुण FM 103.1 MHz पर अपनी रेडियो साथी RJ पूनम के साथ।

श्रोतम दोस्तों, अभी आप आनंद ले रहे थे इस बेहतरीन गीत का, जिसे लिया गया है फिल्म नमस्ते इंग्लैंड से, जिसे गाया है दिलजीत दोसांझ, बादशाह और आस्था गिल ने। और अभी आप सब बने हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात, और आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। तो चलिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत, जिसे गाया है नेहा कक्कड़ ने। तो चलिए, इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

श्रोता दोस्तों, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की।

0: बात।
1: दिल तक बात पहुंची मिलते मिलते सनम। ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

अभी आप आनंद ले रहे थे नॉर्थ ईस्ट परिचय कार्यक्रम टॉक ऑन आपतानी ट्राइब बाय हाबुंग पायम। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत जिसका नाम है दिल गलती कर बैठा बाय जुबिन नोटियार। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट परिचय और कुछ बेहतरीन गीत ये आकाशवाणी ईटानगर गारुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमस्सिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी

0: आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। In Tamil Nadu, the Tamilaga Vetri Kadagam government, led by C. Joseph Vijay, won the floor test in the Tamil Nadu Assembly with 144 MLAs voting in favour, demonstrating a clear majority in the House. 22 MLAs voted against the confidence motion. The DMK, major opposition party, walked out of the Assembly during the proceedings. Mr. Vijay was mandated by the Governor of Tamil Nadu, Rajendra Vishwanath Adlekar, to prove his majority in the floor of the House after his party was able to secure only 108 seats in the recently concluded Assembly election. The Minister of Youth Affairs and Sports, in collaboration with the Minister of Home Affairs, has launched the national-level quiz for the Viksit Vibrant Villages Programme 2026 on the My Bharat platform. The ministry said that the quiz marks the first stage of selection for youth participation in the immersive border village engagement program scheduled to be held next month. All India NR Congress leader N. Rangaswamy was sworn in as the Chief Minister of Puducherry today for the record 5th term. At a ceremony held at the Lok Nivas Puducherry, Lieutenant Governor K. Kailashanathan administered

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार। आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों अब समय हो चला है कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का, तो चलिए आनंद लेते हैं कुछ बेहतरीन गीतों का जो हमें पुराने समय की याद दिला देते हैं। श्रोताओं, दोस्तों, कुछ गाने होते हैं जो वक्त के साथ नहीं जज्बातों के साथ चलते हैं, तो चलिए एक ऐसा ही नगमा पेश है जिसका नाम है

मिलो न तुम तो। दोस्तों इस बेहतरीन गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, ये लिया गया है फिल्म हीर रांझा से। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर अपनी रेडियो साथ ही आरजे पूनम के साथ।

0: I love my Eco, cause it's got more power.
1: And it also comes with all new safety features.
2: We love our Eco, cause we can bring all our friends.
0: We love our Eco, cause it's made every journey special.
3: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
4: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं एक और खूबसूरत गीत, जिसे लिया गया है फिल्म नदियां के पार से, जिसे गाया है हेमलता और जसपाल सिंह ने। इसके गीतकार हैं रविंदर जैन और संगीतकार भी रविंदर जैन हैं। और इस बेहतरीन खूबसूरत गीत के बोल हैं, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। तो ये उस जमाने में कभी ना कभी हर किसी ने इस बेहतरीन गीत को सुना होगा। जब नए नए इश्क का खुमार होता है, तब कहीं ना कहीं ये गीत हर कोई मन ही मन गुनगुनाता है। तो चलिए इस बेहतरीन और खूबसूरत गीत का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का। तो दोस्तों, आज की ये दोपहर मोहब्बत के उन खतों के नाम हैं जो कभी डाकिये के बैग में सफर करते थे और किसी के दिल की धड़कन बन जाया करते थे। जरा सोचिए, वो जमाना जब टाइपिंग नहीं होता था, बस इंतजार होता था। ना कोई मोबाइल, ना कोई इंटरनेट, एक खत था जिसमें लिखा होता था कैसे हो, और वही दो शब्द पूरी दुनिया खुश कर देते थे। और ऐसे ही एहसासों को सुरों में पिरोया था फिल्म कन्यादान में साल 1968 में, जिसमें पर्दे पर खूबसूरती से निभाया था शशि कपूर और आशा पारिक ने। इस गीत को अपनी जादुई आवाज दी थी मोहम्मद रफी साहब ने, और संगीत दिल की धड़कनों जैसा संगीत दिया था लेजेंडरी ड्यू शंकर और जय किशन ने, जबकि लफ्जों में मोहब्बत की रूह भरी थी महान शायर गोपाल दास नीरज ने। तो दोस्तों, आज मैं चाहता हूं कि आप भी इस सफर का हिस्सा बने और इस बेहतरीन गीत का आनंद लें और उस पुराने जमाने का समय को याद करें कि कैसे खत से एक दूसरे से प्यार का इजहार किया जाता था। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: दोस्तों, इसी के साथ हमारा कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक यहीं पर होता है समाप्त। ये आकाशवाणी ईटानगर का रून FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम, ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

श्रोतम दोस्तों, चलिए आपको सुनाते हैं हमारा अगला कार्यक्रम जिसका नाम है हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। तो चलिए आनंद लेते हैं बेहतरीन गीत का जो लिया गया है फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई। इस बेहतरीन गीत को गाया है अलका याग्निक, जसपिंदर नरूला और उदित नारायण ने। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 MHz पर अपनी रेडियो साथ ही।

0: The prevailing heatwave conditions have affected normal life across the region. According to the Met Department, similar weather conditions are likely to continue for the next 2 to 3 days. With Jitendra Divedi's report from Jaipur, Chigasa Pandey, Akashwani News.
1: IMD has also predicted heatwave conditions over Gujarat, Maharashtra and West Madhya Pradesh till tomorrow. The weather agency has forecast hot and humid weather over coastal Karnataka for the day. U.S. President Donald Trump has embarked on a highly anticipated 3-day visit to China. He will hold a summit with Chinese President Xi Jinping in Beijing from tomorrow. President Draupadi Murmu today paid floral tributes to former President Fakhruddin Ali Ahmed at Rashtrapati Bhavan on his birth anniversary. Fakhruddin Ali Ahmed served as the 5th president of the country, holding the office from August 24, 1974, until his death on February 11, 1977. He was the first president to die in office. On to sports and IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru will take on Kolkata Knight Riders in Raipur this evening. The match will begin at 7:30 p.m. Earlier, Gujarat Titans defeated Sunrisers Hyderabad by 82 runs to take the top position in the points table with a compelling all-round show in Ahmedabad last night. Chasing the target of 169 runs, Sunrisers Hyderabad were bundled out for just 86 runs in 14.5 overs. For Gujarat Titans, Kagiso Rabada and Jason Holder scalped 3 wickets. Kagiso Rabada was declared player of the match. And in Thailand Open Badminton, India begins with a positive start today with PV Sindhu and Kidambi Srikanth advancing to the pre-quarterfinals in Bangkok. Two-time Olympic medalist PV Sindhu defeated Chinese Taipei's Tung Ju Tong in straight games 21-9, 21-12 in just 33 minutes. The six-seeded Indian will next face Denmark's Emily Schulz in the round of 16. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. In Tamil Nadu, C. Joseph Vijay-led TVK government wins floor test in state assembly with comfortable majority and Rangaswamy sworn in as Chief Minister Puducherry for a record 5th term. Centre states intensify fuel-saving measures following Prime Minister Narendra Modi's appeal amid global energy crisis triggered by West Asia conflict. CBSE declares All India Senior Secondary Class 12th results. Gold silver prices jump over 6% after government hiked import duty to around 15%. IMD says monsoon likely to arrive early this year. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru to take on Kolkata Knight Riders in Raipur this evening. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मानसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
3: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों विभागों और विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को

0: कर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के पांच अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल

0: प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देशभर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्नपत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रूपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रूपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9 21-12 से 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराओका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोतम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी आरजे पूनम और तैयार हूँ आपके लिए एक और दिलचस्प सफर लेकर, जिसका नाम है हिट्स ऑफ 90s। हिट्स ऑफ 90s में हम आपको सुनाएंगे 90s के दशक के कुछ सुनहरे गाने। तो चलिए बीते पलों को करते हैं याद इन बेहतरीन गानों के साथ। तो सबसे पहला जो गीत है वो ले रहे हैं फिल्म आशिकी से, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने। इस गीत के बोल हैं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 MHz पर अपनी रेडियो साथी आरजे पूनम के साथ।

0: स्माइल।
1: श्रोता दोस्तों, अभी आप आनंद ले रहे थे इस बेहतरीन गीत जो का जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। ये लिया गया है फिल्म विजय पथ से। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत जो 90s के दशक का बहुत ही मशहूर गीत था। ये लिया गया है फिल्म कभी खुशी कभी गम से। अलका याग्निक और उदित नारायण की बेहतरीन आवाज में इसे गाया गया है। इस गीत के बोल हैं ये लड़का हाय अल्लाह। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं। अरुण FM 103.1 MHz पर शाह होती है दिल से दिल की बात।

0: ชอบนะคิงนำนารีนะสตูดิโอมาจีกันมาว่าพาไปเนี่ยจะห้างมาไหนคำไตคำตีเอาตือใครไม่สุดยอดหอ
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ताई खमती श्रोताओं का कार्यक्रम यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोता दोस्तों आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बॉलीवुड की ताजा अपडेट्स। जी हां श्रोताओं अब जो हमारा कार्यक्रम है उसमें आप जानेंगे बॉलीवुड अपडेट्स के बारे में साथ ही कुछ बेहतरीन हिंदी फिल्मों के साथ फिल्मी गीतों के साथ। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन गीत के साथ जो लिया गया है फिल्म गदर 2 से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। तो चलिए आनंद लेते हैं इस बेहतरीन गीत का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर जहां होती है दिल से दिल की बात।

श्रोता दोस्तों, तो मैं हूँ आपकी अपनी आरजे पूनम और आप सब सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद लेंगे फिल्मी और सबसे चटपटे और एंटरटेनिंग शो का, जो है बॉलीवुड अपडेट्स। तो दोस्तों, आप अपने फेवरेट स्टार्स की हर एक्सक्लूसिव हलचल को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहली खबर लेते हैं ग्लैमर और ग्लोबल बज की। आलिया भट्ट हाल ही में केन्स फिल्म फेस्टिवल में नजर आई और वहां उनकी मुलाकात हुई फॉर्मूला वन स्टार कार्लोस सेनेज जूनियर से। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और फैंस कह रहे हैं बॉलीवुड मीट्स फॉर्मूला वन, नाउ दैट्स क्लासी। अब बात है साउथ के आइकन स्टार की। अल्लू अर्जुन ने अपने आइकॉनिक कैरेक्टर राका की पहचान को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ा लीगल कदम उठाया, यानी अब इस कैरेक्टर का नाम और स्टाइल कोई आसानी से यूज नहीं कर पाएगा। ये होती है ब्रांडिंग की पावर। तो दोस्तों, अगली खबर है बॉलीवुड कॉरिडोर्स में इस वक्त एक खबर काफी वायरल है। बताया जा रहा है कि दिलजीत दोसांझ की जगह अब शाहिद कपूर दिखाई दे सकते हैं नो एंट्री 2 में। अब अगर ऐसा हुआ तो कॉमेडी के साथ साथ स्वैग का तड़का तो पक्का है। अब एक इमोशनल खबर, शारिफ हाशमी ने बताया कि उनकी पत्नी नसरीन छठी बार ओरल कैंसर से जंग लड़ रही है। उन्होंने कहा वो फाइटर है, पूरी इंडस्ट्री और फैंस उनके लिए प्रेयर भेज रहे हैं और हम भी दुआ करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। 8 साल बाद अनुष्का शर्मा का नया लुक वायरल हो रहा है। दोस्तों, ये खबर फैंस को बहुत एक्साइटेड कर रही है। अनुष्का शर्मा लगभग 8 साल बाद ऑन स्क्रीन एक नए एड शूट में नजर आई और उनका ट्रांसफॉर्म्ड लुक इंटरनेट पर बहुत वायरल है। फैंस लिटरली शॉक्ड हैं और सोच रहे हैं क्या ये सच में अनुष्का ही है।

0: फाइनली साउथ सिनेमा से बड़ी खबर, विजय सरकार ने करूपू के लिए सुबह 9 बजे के स्पेशल शोज की परमिशन दे दी है। फिल्म में नजर आएगी त्रिशा कृष्णन और फैंस का एक्साइटमेंट लेवल ऑलरेडी हाई है। तो दोस्तों, ये थे आज के सबसे हॉट एंड हैपनिंग बॉलीवुड अपडेट्स। इनमें से कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है, आप सोचिए और हमें अगर हो सके तो मैसेज करके बता दीजिए। तो मैं हूं आपकी दोस्त आरजे पूनम। तो चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: Stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: श्रोताओं, दोस्तों, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स और कुछ बेहतरीन हिंदी गीतों का। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे
3: इजा आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ अनि मेले मानी बन आरम तारीख बुधवार इरुमा के वंचोर साइ का होवांग वांगना होवांगे का हो पाई फाले मंचुई जामे खमे Deputy Chief Minister Chow Nam Men Hia, Minister Ojing Ta Sing Ni Man Itanagar Ma Raksat Bama Na Sing Na Wan Le Black Sunshine Le Ring Ke Theatrical Production To Huang Hak Le Haya Khama Raksa Ke E Khanak Mi Hwa Ka Kom Ka Boma Tu Nu To Le Bale Po Te Po Le Ring Da Ho Le Hale Dr. Delong Padung E Hume Le Center for Folk Performing Art Kha Ang Ke Karpung Karduk E Ring Le Ho Le Hayato Itanagar Anke NRHM SIO Dr. Dimong Padung Echu Ponglekole Papumbare Police Holongi Forest Officials Tamchi Makangju Ponglekole Rhino Mainu Horong Karotuta Laksa Nguntama Hangang Letunke Lablekable Kaho Ma Ayangkole Hale Police Antole Forest of Authorities Tamme Le Tamle Tikto Le Kanakchu Mihwak Ali Jokakle Papumpare Superintendent of Police Rural Taru Gosar e Hale Paume Paike Tajon Ali Atai Le Hangjong Angle Zaika Taile Leke Ka Atat Latle Mani Holongi Entole Asam Chima Haya Horu Hanamto Le Tiktole Lamle Kapulevanle Haya Bama Wildlife Protection Act Tema Case Ranla Le Pangnu Tiktona Central Bureau of Investigation CBI a neat paper leak saika homa Subham Khairna le aman ke khanak khakdoa Subham hale Rajasthan Police jima khange tamge te ma mani Maharashtra to Nasik ma Nasik Police kha anke crime branch unit thame khakle medical colleges buto undergraduate courses ano ang admission lakke rongma le yalet aram tarik to angot ke neat UG 2026 porikha hale paper leak saika like khoma mani eto manla pulapandwa CBI ang government chi makang chu haya saika bama hoto thut le yau tikto dau le damdwa haya bama nit UG 2026 candidate honu pa tham e chu private coaching institute e haya porikha thoma le mock test la ke ma questions puni ani haya nit paper pai Asham le taning le yo bang le Latur SP office to zai ka ko le ha pai tam le Latur police administration e khanak nu pangnu sa hata wai need paper leak pai ke rang ban ba ma tata ning ke zai ka thon yang lap thai chu hale ate ka show hai le ho le Eight legislative assembly kha ang ke committee on public undertakings tham ram le ke ang jikke ta ko ma apala po le

श्रोतम दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

श्रोतों दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग। यह आकाशवाणी ईटानगर का आरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्स है, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुनेंगे ईदू मिशमी श्रोताओं के समाचार।

0: under secretary te talwang bu a meeting ma gi wa bada la ho ga ayo do bu to ko ge ma ho aro ta ge ba ne e ha ma to ti ju chi po itanagar ke la ti ka chi di si do ne district disaster management authority ddma chairman to ko ba bu men bu ni itanagar indira gandhi park dc camp office ma je conference hall ma ne meeting ji ne ga da a ho ga ali rugami ge ma ho department anamro e ma ne anje a thama bro do zipa jaroga ji na ne dishi me laiba ma ho ali rugami ge ma ka ji ewe plan eko ba he ddmo azame la ke bada a ho ga gas podo ne hatumo ma ke kula pa ge hatumo he luji sa khala da ne district food da ne civil supplies of sarazame a meeting ma la ke bada a ho ga golden jubilee meritorious students award zarka anyo ka panyo ma ga ko mane pokum par di dia sime class ka so mane holu ni ma le ba che pamba azo a heta me anam bro he puni upia ti kone award apiga bada a ho ga private done government school ma ma che anyo ki ni me anam bro me a award ko mane pound prize memento done no ya certificate azo pra gagam bada a ho ga buni nahalagan teams ta ma ko mane international nurses day ini ena bama teams din done director dr nabakumar besburwa me karu heta shay bane nurse anubro me pramba joga da nor bada a ho ga nurse anubro ke bane ta ma ko ko ma quarter done hostel o aji te ha aun da da ne dr besburwa me lagane aji po sho ne atu te ga da la ga bada a ho ga nurse joga cha atu ga ne eta no tangala po chi Arunachal Pradesh Staff Selection Board APSSB exam mane iho maga regular nurse alambro alatega odane director azame la ogada ahoga etanchi idmismi aho alima on dobae
1: echa akashwani itanagar dibrugarh nale idmismi program ma echamta ashe
2: अभी आप सुन रहे थे इदु मिश्मी श्रोताओं के समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोता दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में। तो चलिए देर न करते हुए आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत जो लिया गया है फिल्म राजी से। इस गीत के बोल हैं दिलबरो, और इस बेहतरीन गीत को गाया है हर्षदीप कौर, विभा सराफ और शंकर महादेवन ने। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अपनी रेडियो साथी आरजे पूनम के साथ।

श्रोतम दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे एक और बेहतरीन गीत जो लिया गया है फिल्म हाईवे से।

श्रोतों दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनाते हैं, जो गाया है श्रेया घोषाल, उदित नारायण, विशाल ददलानी और शेखर रवि ज्ञानी ने। ये लिया गया है फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। तो चलिए इस बेहतरीन गीत राधा का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी श्रोताओं के साथ।

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, इसी के साथ हमारी दूसरी प्रसारण सभा यहीं पर होती है समाप्त। उम्मीद है कि हमने आप श्रोताओं को भरपूर एंटरटेन किया होगा। FM के कार्यक्रम जारी रहेंगे और आपके आगे के सफर के लिए जुड़ने वाले हैं RJ मंजू। आज की दूसरी प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक एल ताली तथा तकनीकी अभियंता नंद कुमार। श्रोता दोस्तों, तो अब मुझे यानी अपनी RJ साथी पूनम को दीजिए इजाजत और अब आप सुनेंगे तांगशा श्रोताओं के समाचारों को अरुण FM 103.1 MHz पर अपनी रेडियो साथी मंजू के साथ।

ऑडिट रिकमेंडेशन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस नई कंट्रोलर नई ऑडिटर जनरल रिपोर्ट नंग कंप्लायंस इशू त सेट त कमुंग प कमिटी र रफान त मोरो त एमएलए इन एलिंग तलंग असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरी तादार मीना एडिशनल सेक्रेटरी अगाप मोसांग परम अंडर सेक्रेटरी खेतो लोवांगमन सिटिंग नंग अतोंग त मोरो त रंगजिन चोंग नंग कचोपाई म कमुंग नंग रफान म मनै डीसी कम कैपिटल रीजन वंग डीडीएमए चेयरपर्सन तोको बाबू रिव्यू मीटिंग तथुंग तंगो रोक मीटिंग नंग डीसी र वसरप डिपार्टमेंट ताम नाउ करुम रो कम म कौनंग अरेंग सताई मरुक अरो कम सोमवन मैन पावर मशीनरी नई रा र अरेंग रिसोर्सेस जम म कचोपाई मान तोंग म कंसर्न ऑथोरिटी म डीसी कम डीडीएमए चेयरपर्सन रोक परतुंग डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सिविल सप्लाई ऑफिसर वोंग एलपीजी नंग म अरेंग तंगवांग पर स्टॉक नंग अतोंग अरो सप्लाई चेन पर कतंगबांग मुंगो रोक गोल्डन जुबली मेरिटोरियस स्टूडेंट एवार्ड 2024-25 अंडर म पापमपरे डिस्ट्रिक्ट वांग डीडीएससी र मनै डिस्ट्रिक्ट वांग अरोम क्लास म सरनै क्लास वांग टॉप थ्री मेरिटोरियस लिगवन हेंग म ऑनर कु म यूपीआ नंग फेलिसिटेशन प्रोग्राम पर तग्यांग तंगो रोक पर जुबली बाय प्राइवेट गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट एडेड स्कूल ताम वांग खुरतको लिगवन म केस प्राइस मेमेंटोस नई सर्टिफिकेट पर कुतंग रोक लिगवन तुंग नंग लिफाट काउ पर अमाय तग्यांग म लामराव फाउंडेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश र गोल्डन जुबली श्रेंग नंग गोल्डन जुबली मेरिटोरियस स्टूडेंट अवार्ड पर थाक तंग रोक अरो तमोरीबा नाहरलगनवांग तोमोरीबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस स्ट्रीम्स र मनै एकेडमिक ब्लॉक नंग इंटरनेशनल नर्सेस डे सकान पर सरियंग तंगो रोक पर ओकेजन नंग ट्रीम्स वांग डीन कम डायरेक्टर डॉक्टर नाबा कुमार बेस बरुआ पर चीफ गेस्ट म तोंगथोकत पर ओकेजन नंग डॉक्टर बेस बरुआ र मीडियावन मसौ फानरौ कैंपस नंग नर्स हेंग म रेसिडेंशियल क्वार्टर नई हॉस्टल फैसिलिटीज कु म रोग रौ मैनेजमेंट पर कमुंग पर रायमाय र जलाउ मसो पर काम पर तफांगसिंग रोग पर म नोवेम्बर जलिंग नंग ए पी एस एस बी लम अन्या सनसरा बंगा रेगुलर नर्स अपॉइंटमेंट कुशी मोरौमन ट्रिम्स वांग डायरेक्टर डॉक्टर बेस बरुआ र रोग रौ पर र ट्रिम्स नंग हेल्थ केयर सर्विसेस काउ पर तहलिन चिंगो फान तुम रंग थुम र

नमस्कार दोस्तों, तांगसादा इलेक्ट न्यूज के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अरुण एफएम प्रसारण सभा में। थैंक यू सो मच पूनम जी आगे का कार्यभार मुझे सौंपने के लिए। उम्मीद करती हूं कि आपका ये शाम बहुत खूबसूरत बीते। दोस्तों, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती है। उनका आना इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलाव लाना चाहिए। अपने आसपास देखिए, समझिए कि क्या कारण है कि आप सफल नहीं हो रहे हैं या काम सही नहीं हो रहा है। हो सकता है आप में कुछ ऐसा बदलाव लाना होगा आपको, जिससे आपका आगे का कार्य बहुत अच्छा हो जाएगा। वेल दोस्तों, बताना चाहूंगी आपको कि इस वक्त स्टूडियो के घड़ी के अनुसार 4:28 हो रहे हैं और इसी के साथ ही शुरू होती है हमारी आज की अरुण एफएम प्रसारण सभा की तीसरी प्रसारण सभा। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी आरजे मंजू पामो। ये भी बता दो

हमारी कोशिश हमेशा से यही रही है दोस्तों कि हम आपका भरपूर मनोरंजन कर सके गीतों के माध्यम से। एक से बढ़कर एक मजेदार गीत चुन चुन कर लाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सिर्फ गीत ही नहीं, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से भी रूबरू कराते हैं आपको हमेशा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लिए चलते हैं आपको हमारे पहले सेगमेंट की ओर। आइए आनंद देते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। जी हाँ, हमेशा की तरह कुछ मजेदार बातें भी होंगी आपके साथ, मजेदार गीतों के साथ। दोस्तों, गली गली में खुशबू का जादू बिखर जाता है जब भारत का स्ट्रीट फूड भारत का स्ट्रीट फूड दिलों को जब जीत जाता है। फिर चाहे बात पानी पूरी की मस्ती की हो या समोसे के स्वाद का, हर निवाला खुशियों का त्योहार बन ही जाता है। अगर हम बात करें भारतीय स्ट्रीट फूड्स के बारे में, कुछ ऐसे भारतीय स्ट्रीट फूड्स हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में। भारत अपने स्वादिष्ट और विविध स्ट्रीट फूड के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हर राज्य और हर शहर का अपना एक अलग स्वाद और विशेष व्यंजन है। पानी पूरी हो, समोसा हो, चाट हो, मोमोज हो, जलेबी हो, इन सभी स्ट्रीट फूड्स को लोग बहुत पसंद करते हैं। भारतीय स्ट्रीट फूड की लोकप्रियता का मुख्य कारण उनका स्वाद, कम कीमत और आसानी से उपलब्ध होना है। मसालों और विभिन्न प्रकार के चटनियों के कारण इनका स्वाद अनोखा होता है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, आज इस कार्यक्रम के दौरान हम बातें करेंगे कुछ ऐसे स्ट्रीट फूड्स के बारे में जिन्हें हम सभी खाना तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इनकी शुरुआत कहाँ से हुई ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए सबसे पहले बातें करते हैं पानी पूरी के बारे में। जी हाँ, पानी पूरी जिसे हम अंग्रेजी में क्रिस्पी वाटर बॉल्स कहते हैं, यह कुरकुरी पूरी होती है जिसमें मसालेदार पानी, आलू, चना और मसाले भरे जाते हैं। पानी पूरी भारत का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे गोलगप्पा, पुचका। माना जाता है कि इसकी शुरुआत प्राचीन भारत में ही हुई थी। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार कहा जाता है कि द्रौपदी ने भारत काल में पहली बार ऐसा व्यंजन बनाया था। हालांकि इसका

0: कोई पक्का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। समय के साथ यह स्नैक पूरी भारत में लोकप्रिय हो गया और हर राज्य के लोग इसे पसंद करने लगे। आज पानी पूरी भारत की पहचान बन चुकी है और बच्चों से लेकर बड़े तक इसे बड़े चाव से खाते हैं। और फिर समोसा कहाँ पीछे रहेगा। समोसा दोस्तों बहुत पसंद करते हैं लोग। इसे अंग्रेजी में स्टफ्ड फ्राइड पेस्ट्री कहते हैं। यह मसालेदार आलू मटर और अन्य भरावन से भरी हुई तली हुई स्नैक होती है। समोसे की शुरुआत भारत में नहीं मानी जाती है। इस इतिहास के अनुसार इसका ओरिजिन मध्य एशिया और पर्शिया में हुआ था। वहाँ इसे संबोसा और संबुसक कहा जाता था। पुराने समय में व्यापारी और यात्री इसे अपने साथ अलग अलग जगह पर ले गए और धीरे धीरे भारत भी पहुंचा और भारतीय मसालों तथा स्वाद के अनुसार बदलता गया। भारत में आलू मटर और मसालों की भरावन के साथ बनने वाला ट्रायंगुलर शेप यह समोसा बहुत लोकप्रिय हो गया। आज समोसा भारत के सबसे प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड्स में से एक है। इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें करेंगे श्रोता आज हम इस कार्यक्रम के दौरान। और बता दूं आपको, आप बने हुए हैं हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का। फिलहाल चलिए आपको लिए चलते हैं इस मजेदार गीत की ओर, जिसे हमने लिया है बजरंगी भाईजान फिल्म से।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी।

0: तो दोस्तों, जब हम भारतीय खाने के बारे में बात कर रहे हैं तो रसगुल्ला हो ही नहीं सकता कि पीछे रह जाए। अंग्रेजी में रसगुल्ले को सिरप सॉफ्ट चीज बॉल कहते हैं। रसगुल्ले की शुरुआत के बारे में कहा जाए तो ये वेस्ट बंगाल और ओडिशा दोनों अपने अपने दावे करते हैं। माना जाता है कि पुराने समय में ओडिशा के मंदिरों में छेना से बनी मिठाइयां भगवान को चढ़ाई जाती थी। बाद में बंगाल में इस मिठाई को आधुनिक रूप मिला और यह बहुत प्रसिद्ध हो गई। कहा तो ये भी जाता है कि 19वीं शताब्दी में नोबिन चंद्र दास ने कोलकाता में स्पंजी रसगुल्ले को लोकप्रिय बनाया। इसके बाद रसगुल्ला पूरे भारत और दुनिया भर में मशहूर हो गया। और फिर अब बात आती है जलेबियों के, जलेबी का। अब जलेबी भला कहाँ पीछे रहेगी? ऐसा कोई नहीं होगा शायद जिन्हें जलेबी पसंद नहीं है। जलेबी एक बहुत ही लोकप्रिय भारतीय मिठाई है, लेकिन इसकी शुरुआत भारत में नहीं मानी जाती है। इतिहासकारों के अनुसार जलेबी का मूल संबंध मध्य एशिया और पर्शिया से था। वहां इसे जलाबिया कहा जाता था। धीरे धीरे व्यापारियों और यात्रियों के माध्यम से यह मिठाई भारत में भी पहुंची। भारत आने के बाद जलेबी का स्वाद और बनाने का तरीका भारतीय संस्कृति के अनुसार बदल गया। मैदा के घोल को गोल आकार में गर्म पानी यानी कि माफ कीजिएगा गर्म तेल में तलकर चाशनी में डुबोया जाने लगा, जिससे इसकी मिठास और कुरकुरापन लोगों को बहुत पसंद आने लगा। समय के साथ जलेबी भारत के त्योहार, मेलों और खुशियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। आज देश के हर राज्य में जलेबी अलग अलग अंदाज में बनाई और खाई जाती है। गर्म जलेबी को दही, दूध या कचौड़ी के साथ भी खाने की परंपरा अलग अलग जगहों में बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये थी भारतीय स्ट्रीट फूड्स के बारे में जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस अगले गीत का, जिसे हमने लिया है फिल्म बातों बातों में से।
1: उठ सबके कदम, देखो रम पम पम।

0: मेरे प्यारे दोस्तों, इसी गीत के साथ यानी कि फिल्म बातों बातों के बातों में फिल्म के इसी गीत के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे नोक्टे डायलेक्ट न्यूज।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे पुलिस ने होलोंगी वन अधिकारियों के सहयोग से वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत लगभग 1.02 करोड़ रुपए की राइनो हॉर्न की तस्करी का भंडाफोड़ किया। जिला उपायुक्त सह डीडीएम अध्यक्ष कैपिटल रिजन तोको बाबू ने आगामी दक्षिण पश्चिम मानसून की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन राजधानी ईटानगर स्थित आईजी पार्क के डीसी कैंप ऑफिस में की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। पश्चिम एशिया संघर्ष में उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए। सरकार द्वारा आयात शुल्क में लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल मानसून जल्द आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे पुलिस द्वारा होलोंगी वन अधिकारियों के सहयोग से वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत लगभग 1.20 करोड़ रुपए की राइनो हॉर्न के तस्करी का भंडाफोड़ किया है। सूत्रों के अनुसार इस ऑपरेशन में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को अवैध वन्यजीव व्यापार से जुड़े लेनदेन के दौरान पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तारू गुसार ने कहा है कि ये कार्रवाई 12 मई को होलोंगी और असम के आसपास के क्षेत्र में मिली पुख्ता सूचना के आधार पर की गई। इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है, जिसके तहत आगे की जांच अभी जारी है। जिला उपायुक्त सह डीटीएमए अध्यक्ष कैपिटल रिजन तोको बाबू ने आगामी दक्षिण पश्चिम मानसून की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन राजधानी ईटानगर स्थित आईजी पार्क के डीसी कैंप ऑफिस में किया। बैठक में मानसून से होने वाली आपदाओं के प्रभाव को कम करने हेतु रणनीतियों और सावधानियों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी विभागों को समन्वय के साथ तैयार रहने और पर्याप्त मानव संसाधन, मशीनरी एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध रखने के निर्देश जारी किए। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया। एडापड़ी पलानीसामी ने नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता की 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रह गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों की वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई है। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का

0: आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सुनिए ये रिपोर्ट।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रहित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विशेषज्ञ में परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया है कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है, जबकि छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है और छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा शुभम खैरनार की कथित नीट पर पेरलीक मामले में हिरासत में लिया गया है। शुभम को महाराष्ट्र के नासिक में कल क्राइम ब्रांच द्वारा हिरासत में लिया गया था। ये कार्रवाई राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर की गई थी। नीट UG 2026 परीक्षा जिस महीने की 3 तारीख को आयोजित की गई थी, पेपरलीक आरोपों के बाद कल रद्द कर दी गई। सरकार ने जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंपी है। इसी मामले में लातूर में एक अभिभावक ने शिकायत दर्ज कराई है कि कोचिंग संस्थान द्वारा परीक्षा से पहले कराए गए मॉक टेस्ट में 42 प्रश्न वास्तविक नीट पेपर से मिलते जुलते पाए गए थे। लातूर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी या सबूत सामने लेकर आए। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 6 जिलों तवांग, क्रादादी, अपर सुबनसिरी, शियोमी, दिबांग वैली और लोहित को छोड़कर सभी अन्य जिलों के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भारत ने इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जल्द हो सकता है, इस तरह की कार्रवाई विज्ञप्ति जारी की है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ जाएगा। विभाग ने बताया कि दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव के क्षेत्र कल भी इसी तरह के क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। IMD ने कहा है कि अगले 24 घंटों में इसके और अधिक प्रभावी होने की संभावना है। भारत ने कल से शुरू होने वाले 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकोनेका से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
3: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों की विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ा

0: वेलकम बैक दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे श्रोता, अभी आप सुन रहे थे नोक्ते डायलेक्ट न्यूज। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, खुशियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परिवार के बिना यह खुशी अधूरी ही लगती है। इसीलिए अपने परिवार को अहमियत दीजिए, पूरा समय दीजिए अपने परिवार को और हमेशा अपने परिवार वालों का साथ दीजिए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट का। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग, माफ कीजिएगा श्रोता, आनंद लेते हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा। लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव।

तो मेरे प्यारे दोस्तों, बताना चाहूंगी आपको कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का हमारे साथ अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और पहला गीत आपने सुना शिल्पा राव और सचिन जिगर की आवाजों में जरा हटके जरा बचके फिल्म से। और इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को सांवरिया फिल्म से मोंटी शर्मा और पार्थिव गोहिल की आवाजों में।

जी हाँ दोस्तों, मजेदार गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जिसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वेल दोस्तों, बता दूं आपको कि कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यहीं पर समाप्त होता है, यानी कि आशिकी 2 फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन निराश होना ही नहीं है, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा अगला कार्यक्रम, हमारा अगला सेगमेंट शाम की महफिल।

0: श्रोता, आनंद ले रहे थे इस गीत का गुजार इस फिल्म से, और इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम शाम की महफिल की समापन यहीं पर होती है। लेकिन आप निराश बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों का आनंद हम लेने वाले हैं हमारे अगले सेगमेंट में। बने रहे हमारे साथ अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: Sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to rupees 52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

शुक्रिया। अभी आपने आनंद लिया दीदी प्यार दे तू फिल्म के इस गीत का। बता दो एक बार फिर से कि आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का, और इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का ऐश किंग की आवाज में। ओके, चालो फिल्म से।

0: से गीत के साथ ही आपको बता दूं कि अब से बस कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से आदि डायलेक्ट न्यूज, और हम मनोरंजन के इस सिलसिले को जारी रखेंगे, ठीक जुड़ेंगे आपसे आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद।
1: आकाशवाणी ईटानगर सीलो लोबो पोलो लोग लोइंग को ला लोग आउम तारिक उते दी कोंगे तन्ना के दिंगम असर रूप कुमरिक सीलो ला सीयुम के अधि पेगुम ताबा लेंडुम कराया पे अधि लुता दम तत्पाय लुबिना सी बालों मुआं डिप्टी सीप मिनिस्टर सोना मिलंग मिनिस्टर ओजिंग तसिंग बिन्ये ड्रग्स तीनम दोनम लोग आई मानम लगांगम केंडो पे मयुम के ब्लैक साइन एम नमम डी के कॉन्वेंशन हॉल ईटानगर लोग इकन नमम कांगी बोगेतो प्रोडक्शन डम कार्पुम कार्डुक सेंटर पर परफॉर्मिंग आर एंड प्रोडक्शन ने इकान बोतो देलोग डायरेक्टर पर डॉक्टर देलो पाडुबी इबोतुं ब्लैक साइन लेंकन नाम दे ड्रग्स आसिया पोंग बांकानी तीन अडोना देलोग एडुंगरंगे सोसाइटी ये तलो कपरिन इडू ने डेकन आयमान अतिम इकान बोडोला सोशल मीडिया ये तसलोक आयरुना मेसेज को पे इकान बोतुं वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग पापुम पारे पुलिस दे Holongi Forest Officials e idum sidola roino rebung pesikor ium na amia piko pate kotung kumeyum. Bulukung 1.20 koros arena roino rebung kolangkam lentoku. Papumpare SP Tarugusar Belukando ne KSM Wildlife Protection Eglog Registarto dek amia pisim ingkitawem ibom dungam lalukan bitungku. Need paper leak case law. Central Bureau Investigation ne subom kair narme pate glatoku. Subo Maharashtra Nasik lok crime branch lok melole tuwe Rajasthan police lok kam langge kula. Dem CBI lahon situngku. NEET UG 2026 exam delo medical college lega pe polo so lok ika na longa aum tarik delo bidia ngay. Exam em cancel bom toku. Candidate lok anda abukiti nge latur SP office lok private coaching institute exam det kera pe mock test ibom nam lo 42 question ko actual NEET paper lok atung kum complain binamem. Latur polis kitinga mana me pepa lig nam lo evidence kitinga patoko. Ein na pana legislative assembly lo tar sitinga me melodu bom to jikke to.

0: शेयर मीन सी ब्लॉक पब्लिक सेक्टर लोक ऑडिट ऑब्जर्वेशन अरुणाचल प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड देख अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड लेगा एवं बड़ेलो अलिंग तलंग लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरी तादर मीना एडिशनल सेक्रेटरी आगाप मोसंग अंडर सेक्रेटरी के तो लोवांग बुलू मेलो का ताटना पना सिटिंग देलो दू मिन गतुंग कैपिटल रीजन डीसी पलंग डीडीएमए शेयर पर्सन तो को बाबू भी मेलो आपना लोबो डोजे लगा पति ले मो डोपमला बेबो डूडुम को डुंगी बोगतो आईजी पार्क डीसी के एम ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल इटानगर लो बेबो डूडुम देलो डीसी भी डिपार्टमेंट तक का मेलो बो डोजे लगा पति ले मो माई रूप इलांका डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट है को मेन पावर मिशनरी अतिक्रीडिंग माई रूप पति ले मो लंका नलुकान बोतुम डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सिविल सप्लाई ऑफिसर एलुडो ने लोबो डोजे लगा पे डोबिंटी मो एलपीजी सप्लाई इस्तोंगलो अडुडुंग पुराम हामो कमायम लालुकान बोतुंग तन्ना किडेंगे आदि लुतादागों सिम आकाशवाणी इटानगर लोक तत्पादुंग पपुम परे डीडीएसई वी मेलो गोल्डन जुबली मेरिटोरियस स्टूडेंट अवार्ड 2024-25 में बीबोडोला फेलिसिटेशन पेबो को यूपीएल इवम तो देलो क्लास 3 लोक का क्लास 12 लोक का टॉप 3 पोरिको किडेंगे लुडुंग सिला 29 पोरिको को केस मोमेंटोस दे सर्टिफिकेट पे अमानेम दिबम तो थीम्स तोमो रिवर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस ए इंटरनेशनल नर्स डे एम मेलो अदिरु पे लोडुम बम तो बुलुक एकेडमिक ब्लॉक लो पेबोरे लोक पोंडो बते पे थीम्स लोक डॉक्टर डायरेक्टर डॉक्टर नाबा कुमार बेस बरुआ आबितो बेस बरुआ पेबोरे लुडो ने मेडिकल सर्विस आयोन लो नर्स से अगेरा नम गेरगे बोया डुम दे पे इला नर्स किदि मेडिकल कैंपस आरा लो डुम को दे क्वार्टर एम दूसरी तो पे एकम ला लुकान बरो लुतेन दो ने आपना तेरेम पोलो लो 75 न्यू रेगुलर नर्स को APSSB लो लेंगे दे मिलो पेशेंट नर्स रेशियो ए ट्रीम सो आई आई कुमला लुकान बोतुंग से यूं का अधी लुता डागो में सोल्लू इन भी तन्ना के दिंगे आई पे
1: adi lutadam tarro lo siyum ke ngoluk adi miri ponung pe bosol tanna ke dinga lomiyug lego ke lurre miri lok tattunga tengot tatpa bomie

0: नमस्कार दोस्तों, आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद लीजिए हाजिर हो गई हूँ आपकी खिदमत में एक बार फिर से मनोरंजन के सिलसिले को जारी रखते हुए। तो चलिए इस बार आपको लिए चलते हैं श्रोता कार्यक्रम आज के कलाकार की ओर।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimedes. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

स्वागत है दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में। जी हाँ, हमेशा की तरह मजेदार गीत जरूर है आपके लिए और साथ ही साथ आज हम बातें करेंगे एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिन्होंने 90 के दशक में आप सभी के दिलों को छू लिया था।

दोस्तों आज हम बातें करेंगे नेपाल की खूबसूरत अदाकारा मनीषा कोइराला के बारे में। 90 के दशक में युवाओं के दिल की धड़कन मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 में नेपाल के काठमांडू में एक राजनीतिक परिवार में हुआ। मनीषा एक दौर की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी। सौदागर से लेकर अकेले हम अकेले तुम तक जैसी कई फिल्मों में शानदार एक्टिंग करने वाली मनीषा को ऑडियंस ने खूब सराहा, खूब प्यार मिला उन्हें दर्शकों का। मनीषा कोइराला ने फिल्मी करियर की शुरुआत नेपाली फिल्म से की थी, लेकिन हिंदी सिनेमा में उन्होंने फिल्म सौदागर से कदम रखा। इस फिल्म में वे दो लीजेंड कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया, दिलीप कुमार और राजकुमार। इस फिल्म में मनीषा और एक्टर विवेक की लव स्टोरी थी। फिल्म से लोग मनीषा की मासूमियत के भी लोग दीवाने हो गए थे। सौदागर की शुरुआत कर मनीषा ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। जनता ने उन्होंने खूब सराहा और खूब प्यार दिया। आगे और भी बातें करेंगे मनीषा कोइराला के बारे में, लेकिन फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं सौदागर फिल्म के इस खूबसूरत गीत का।

अभी अभी आपने आनंद लिया इस गीत का सौदागर फिल्म से, और एक बार फिर से आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार का हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो चलिए बातें करते हैं खूबसूरत नेपाली अदाकारा मनीषा कोइराला के बारे में। दोस्तों, एक बार मनीषा ने बताया था कि वे कभी भी एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी, बल्कि उनका सपना तो डॉक्टर बनने का था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। उन्हें एक मॉडलिंग का ऑफर आया, जिसके बाद उनकी दिलचस्पी फिल्म इंडस्ट्री की ओर बढ़ी। उनके परिवार ने उन्हें सिर्फ एक हफ्ते का समय दिया था, और इसी एक हफ्ते में उनके पास चार नामी फिल्म निर्माताओं और एक्टर्स के साथ काम करने का ऑफर आया, जिसमें सुभाष घई, शेखर कपूर और ऋषि कपूर का नाम शामिल था। 90 के दशक में मनीषा कोइराला की दीवानगी का आलम तो ऐसा था कि कहते हैं फैंस उन्हें खून से लव लेटर लिखकर भेजा करते थे। साल 1991 में प्रदर्शित फिल्म सौदागर से मनीषा कोइराला ने बतौर अभिनेत्री हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। करियर से कुछ सालों बाद उन्होंने ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद साल 2010 में उन्होंने नेपाल के एक बिजनेसमैन से शादी की, लेकिन उनकी ये शादी बहुत सक्सेसफुल नहीं रही। शादी के 2 साल बाद ही उनकी शादी टूट गई। इसके बाद उनकी जिंदगी में कैंसर जैसी बीमारी ने एंट्री ली। उन्होंने साल 2012 में ओवरी कैंसर का इलाज करवाया और सफलतापूर्वक इस पर जीत हासिल की।

0: श्रोता, आपने आनंद रिया इस गीत का 1942 लव स्टोरी फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, और इसी गीत के साथ ही बताना चाहेंगे श्रोता आपको कि कार्यक्रम आज के कलाकार का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक कुछ और मजेदार गीतों और एक और नए कलाकार के साथ। फिलहाल बता दूं आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से निशी डायरेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक निशी डायरेक्ट न्यूज के बाद।
1: आकाशवाणी ईटानगर पोकुम लिचिर पोर गा अलोलु रिगुला लोम नन एजे उरुम गा कने बाजे रे मे तान मेलम आर मेले सुरुंग निशी अम आर मुनन जी ग्रे मे तान गे दत्ता छो बे सुरुंग शि पुम ता पा छो रे जब जरशी नर्म आकोम हर रे पुबाबला राइनो मे नम सोमेन आरे हम सो अकेन पॉइंट चेम नि कोरो दोर दाम गोब रिन हम कोरपा मे रिशिली पे ग ला रिन हम पापुम पारे ग पुलिस ग द ख होलोंगी पोरस ऑफिसर छि ग द ने रिदर मे दर को ग रिक ला लातु न्याप कु मखल मे पा दो ओका पुलिस ला पोरस अथॉरिटी गुद ख लेकिन गोब निमा क रप ग ग्रिक ला सोमेन अरे हम पुक्षि पुपे क अलावा पुगु पाग खुने निदुम एप गो ला तो न्याप कु मखब ला मेन पा ता दो ओका सोमेन अरे हम कोरपा में रिकर ग दो हम ला रुनी रूप हम तपा कुनम लगा बस ओका सोमेन अरे हम पुष्प पुपे कुन ग द ने ला तो पुकु नम ओका सोका सोमेन शर अरे हम पुष्प पुपे क अलावा पुगु पाग ग दो कुनम हम ला रुनी रूप हम तपा कुनम लगा ब निमा हम सोका लिचिर फोर ग अरो लुर गोरा लुनी नन हो होलोंग ग द लोला सोका ग द दुर मिसि कोक आसाम थेलो निमा ग रुकर कु म सोका रिमुर मिमुर कुन नि ग द हम ला तो पुकु नम हम ला पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट एस

0: निशी दैनिक न्यूज के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में श्रोता। तो चलिए मनोरंजन के सिलसिले को जारी रखते हुए लिए चलते हैं आपको कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों की ओर।
1: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVD.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

0: बता दूं आपको कि इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का सुपरहिट मूवी RRR से राहुल सिप्लीगंज और विशाल मिश्रा के आवाजों में।
1: सराहा यका यकीना चो नाचो नाचो।

0: श्रोता, सड़क दो फिल्म के इसी गीत के साथ ही बता दूं आपको कि हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे आपको कि इस बार आपको लिए चलते हैं कुछ स्थानीय गीतों की ओर। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम अपना गीत का।
1: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVD.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Namaskar. Arun FM 103.1 MHz sunne wale sabhi shrotaon ka कार्यक्रम अपना गीत में हार्दिक स्वागत है। और इस कार्यक्रम के सफर में मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अता। आज का अपना गीत कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं सिंह को गीत से। इस गीत को

अरुणाचल प्रदेश के कई जनजातियाँ जैसे निशी, तागिन, अपतनिक, गालो आदि स्वयं को सृष्टि का पहला मानव अबोतानी के वंशज मानते हैं। उसी तरह हर समुदाय के लोगों की अपनी अपनी मान्यता है और सभी के स्रोत अलग अलग भी है, पर एक समानता है सभी जाति या समुदाय में और वो है उनकी परंपरा या संस्कृति का स्रोत। जी हाँ, हम आज जो भी है और जिस भी परंपरा के साथ है उसका स्रोत तो हमारे पूर्वज ही है, इसीलिए हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, आदर करना चाहिए और सदियों से चले आ रहे हमारे अमूल्य संस्कृति और परंपरा का संरक्षण भी करना चाहिए। तो चलिए इन्हीं बातों पर सुनते हैं अगला गीत निशी भाषा में बिजनू नावम की आवाज़ में।

कोकुन तिखक की आवाज में आप सुन रहे थे तांगसा गीत। हमारे श्रोता मित्र सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जो अब तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, बारिश के बहुत सारे अलग अलग साइड इफेक्ट्स हैं। जी हाँ, बारिश हर एक इंसान में अलग अलग फीलिंग्स पैदा करते हैं। जैसे जवानी बारिश में भीगना पसंद करते हैं, सूखे से बचने के लिए किसान बारिश के बूंदों को अमृत मानते हैं, मगर यही बारिश पहाड़ों में भूस्खलन पैदा कर हर तरह से लोगों को परेशान भी करती है। फिर वही बारिश में घर के अंदर बैठकर चाय की चुस्की लेना या फिर कंबल से लिपटकर सोने का भी एक अलग ही आनंद है। तो चलिए श्रोता, इसी बात पर क्यों ना हम बारिश पर एक गीत सुने। मोगेदो जी की आवाज में लीजिए पेश है एक आदि गीत।

आप सुन रहे थे नुक्ते गीत तावांग लोवांग की आवाज में। प्यार मोहब्बत में किसी के ओहदे जात पात रूप रंग नहीं देखा जाता, और अगर कहीं पर भी ये बीच में आ जाए तो समझ जाना कि वो सच्चा प्यार नहीं है। प्यार तो एक मीठा सा एहसास है जहाँ कुछ भी देखने और सुनने के लिए सिर्फ दिल की जरूरत होती है जो महसूस कर सके। कहते हैं ना कि कोई प्यार करे तो तुमसे करे, सिर्फ तुमसे, तुम्हें तुम्हारे ही रूप में प्यार करे, और अगर कोई तुम्हें बदल कर प्यार करता है तो वो प्यार नहीं सौदा है। श्रोता मित्रों, ये बात हमेशा याद रखना और हमेशा खुश रहना। चलिए अपना गीत कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं गालो गीत रेरिक कार्लो दिग्बाक और मार्तो कामदा की आवाज में।

0: तो श्रोताओं, इसी गालो गीत के साथ कार्यक्रम अपना गीत का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ हमारे कार्यक्रम श्रोता मित्रों को पसंद आए होंगे, और इसी उम्मीद के साथ लेती हूँ आप सभी श्रोताओं से विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे स्थानीय गीतों पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत। आइए इस बार आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम युवा वाणी की ओर।
2: यह आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और आप सुन रहे हैं युवाओं का प्रेरणादायक कार्यक्रम युवा वाणी। मैं हूं आपकी साथी फ्लोरेंस शर्मा, और आप सभी युवा श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, रेडियो की कहानी सिर्फ एक तकनीक की कहानी नहीं है, बल्कि ये आवाजों, संघर्षों और समय के साथ बदलाव की एक खूबसूरत यात्रा है। रेडियो का जन्म 19वीं सदी के

0: अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ, जब वैज्ञानिकों ने ये साबित किया कि बिना तारों के भी आवाज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जा सकती है। यही खोज आगे चलकर रेडियो प्रसारण की नींव बनी। धीरे धीरे रेडियो ने दुनिया भर में अपनी जगह बनानी शुरू की। भारत में भी रेडियो का सफर बहुत महत्वपूर्ण रहा है। शुरुआती दौर में सीमित संसाधनों और तकनीक के साथ प्रसारण शुरू हुआ, लेकिन फिर भी इसकी पहुंच लोगों के दिलों तक पहुंचती गई। समाचार, संगीत और शैक्षिक कार्यक्रमों में माध्यम से रेडियो ने समाज को जोड़ने का काम किया। आज हम जिस ऑल इंडिया रेडियो को जानते हैं, उसने भारत में रेडियो को एक मजबूत पहचान दी है। खासकर स्वतंत्रता के समय और उसके बाद रेडियो ने लोगों को जागरूक करने, जोड़ने और जानकारी पहुंचने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि समय के साथ टेलीविजन, इंटरनेट एंड मोबाइल जैसे नए माध्यम आए और रेडियो के सामने कई चुनौतियां भी आई, लेकिन इसके बावजूद रेडियो ने खुद को बदलाव, आधुनिक तकनीक को अपनाया और आज भी अपनी उपस्थिति बनाए रखी है। ये आज भी ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों तक लोगों तक पहुंच रहा है। रेडियो की सबसे बड़ी ताकत उसकी सादगी और उसकी आवाज है। ये बिना किसी दिखावे के सीधे दिल तक पहुंचती है। ये वजह है कि इतने सालों बाद भी ये माध्यम आज भी जीवित है, प्रासंगिक है और लोगों के जीवन का हिस्सा बना हुआ है। और इसी सुंदर यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम आज रेडियो के 90 वर्षों का ये विशेष उत्सव मना रहे हैं। सभी श्रोताओं, आज का दिन वास्तव में बहुत विशेष है। आज हम रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। ये केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा का प्रतीक है जिसने समय के साथ लोगों की आवाजों, भावनाओं और पीढ़ियों को आपस में जोड़ा है। रेडियो हमेशा से सिर्फ एक माध्यम नहीं रहा, बल्कि ये एक साथी की तरह हमारे जीवन में मौजूद रहा है। सुबह की खबरों से लेकर रात के संगीत तक, विचार विमर्श से लेकर मनोरंजन तक, रेडियो ने हमेशा हमारे जीवन के हर पल को अपने साथ जोड़ा है। आज भले ही डिजिटल युग में अनेक नए माध्यम आ गए हो, लेकिन रेडियो की सादगी और उसकी सच्चाई आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। इस विशेष अवसर पर युवा वाणी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये युवाओं की आवाज को एक मंच देता है। ये ऐसा मंच है जहाँ नई पीढ़ी अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने अनुभवों को खुलकर साझा कर सकती है। ये कार्यक्रम हमें याद दिलाता है कि रेडियो केवल अतीत की चीज नहीं है, बल्कि ये आवाज भी उतना ही जीवंत और प्रासंगिक है। आज के समय में संगीत एप्स, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में हम एक पल रुककर ये सोचते हैं कि क्या रेडियो आज भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है? क्या ये आज भी हमारे दिलों को वैसे ही छूता है जैसे पहले छूता था? इन्हीं सवालों के उत्तर जानने के लिए आज मैं अलग अलग लोगों से बातचीत करने जा रही हूँ, छात्रों, युवा रचनाकारों और श्रोताओं से, जो अपने अनुभव और विचार हमारे साथ साझा करेंगे। उनके माध्यम से हम समझेंगे कि रेडियो आज की पीढ़ी के लिए क्या मायने रखता है। ये यात्रा केवल प्रश्न और उत्तर की नहीं है, बल्कि ये सुनने की यात्रा है, उन कहानियों को सुनने की, उन भावनाओं को समझने की और उस रेडियो को महसूस करने की जो आज भी चुपचाप हमारे जीवन का हिस्सा बना हुआ है। तो आइए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के इस विशेष युवा वाणी कार्यक्रम में, जहां हम मना रहे हैं रेडियो के 90 वर्ष। एक ऐसा माध्यम जो आवाज से शुरू हुआ लेकिन हमेशा दिलों तक पहुंचा। एज वी सेलिब्रेट 90 ईयर्स ऑफ रेडियो, I would like to begin by asking Hage Anku, how do you see radio today in the digital era, and do you think it is still relevant in our lives?
1: That's actually something I think about a lot, because we have kind of grown up in between both worlds, right? Like we have seen radio, but also the rise of the phone, streaming apps and everything. So I feel like radio today is not

continues to exist in the background of our lives, softly reminding us that simple things can still be powerful. Programs like Yuvavani continue to carry this legacy forward, giving space to youth voices and new ideas, providing that radio is still growing with time. So as I conclude this program, I would just like to say, don't underestimate the power of something simple. Sometimes, a voice without a screen, a story without visual, and a moment of pure listening can touch us more deeply than anything else. Radio may have completed 90 years, but its journey is far from over. Because as long as there are voices to speak, hearts to listen, radio will always live on. जैसे ही हम इस विशेष युवावाणी कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं आप सभी श्रोताओं को हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे साथ इस सुंदर यात्रा में समय बिताया। रेडियो ने हमेशा लोगों को जोड़ा है, दूर बैठे हुए अनजान लोगों को भी एक ही आवाज से जोड़ने का काम किया है। ये हमें याद दिलाता है कि तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, इंसान को इंसान से जोड़ने वाली चीज हमेशा भावनाएं ही रहेगी। तो अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं है, ये एक एहसास है, ये वो आवाज है जो बिना देखे भी दिल तक पहुंचती है, वो साथी है जो बिना बोले भी साथ निभाता है, और वो सादगी है जो हमें बार बार अपनी ओर खींचती है। इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर चीज एक क्लिक पर उपलब्ध है, रेडियो हमें एक अलग अनुभव देता है, एक अनुभव जहां हम रुकते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हर आवाज सिर्फ ध्वनि नहीं होती, बल्कि उसके पीछे एक कहानी, एक भावना और एक इंसान होता है। रेडियो की सबसे बड़ी खूबी उसकी सादगी है। यह ना तो हमें दिखावे की दुनिया में ले जाता है, ना ही हमें किसी प्रतियोगिता में डालता है। ये बस हमारे साथ होता है, सुबह की शुरुआत में, सफर के दौरान, या कभी अकेलेपन के पलों में। और शायद यही कारण है कि इतने सालों बाद भी ये माध्यम हमारे दिलों में जिंदा है। आज हमने अलग अलग लोगों की बातें सुनी, युवा, छात्रा, क्रिएटर्स और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग, और सभी की बातों में एक सुंदर सामान्यता थी कि रेडियो आज भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन का हिस्सा है। ये कभी यादों में, कभी संगीत में, तो कभी एक सुकून देने वाला आवाज के रूप में हमारे साथ रहता है। रेडियो के 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये अभी भी चल रही है, अभी भी सुनाई दे रही है और अभी भी दिलों में बस रही है, क्योंकि जब तक कोई सुनने वाला है और कोई बोलने वाला आवाज है, तब तक रेडियो हमेशा जीवित रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मैं आपकी रेडियो साथी फ्लोरेंस शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, ये वादे के साथ कि अगले हफ्ते बुधवार ठीक इसी समय फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के साथ। धन्यवाद।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा वाणी। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए इस बार आपको लिए चलते हैं पुराने मगर सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत की ओर।
1: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVD.
2: Get attractive offers up to Rs. 52,100.

नमस्कार दोस्तों, पुराने मगर सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पहला गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में बड़े दिल वाले फिल्म से, और इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को अर्पण फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

0: गीत के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि कार्यक्रम भूले बिश्री गीत यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त 9:30 होने जा रहे हैं और इसी के साथ ही हमारी आज की अरुण एफएम प्रसारण सभा की समापन यहीं पर होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इसी तरह के ढेरों मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह 5:48 पर। तब तक के लिए स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम के साथ मुझे यानी कि आपकी दोस्त आपकी आरजे मंजू पामो को दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जिसके लिए आपको सीधे लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के एफएम गोल्ड पर।
1: चर्चा का विषय है
2: दुनिया की नब्ज। पश्चिमी एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक, आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मूज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान।

0: पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा, आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: थैंक्स सर।
0: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मूज की मौजूदा स्थिति है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
2: सो आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मूज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मूज से आता है, और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी एक का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं, और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं, उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है, और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है, ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
3: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं, तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है, और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें, तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त है?
1: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहाँ खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे, और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास

0: की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो है। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है।
1: जी
0: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं
1: जी
0: और दूसरे सबसे बड़े आयातक हैं, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, ईरान, इनके लिए आवश्यक होता है भारत अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक अहम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पे जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरह चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का। तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है, और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए, बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई। बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट, तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है

0: से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कि 6 गुना के बराबर होती है आज के स्तर से, तो उसके लिए ये सब तरह के साधन, और यदि डोमेस्टिक है तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है, और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: कि हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है। इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है, और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हरेक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पे, विश्व की अर्थव्यवस्था पे, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है, एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है जैसे क्वाड के अंदर है, उसको साथ में, इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग भी विदेश मंत्री की जा रही है।

0: यहां भी एक विषय रही रहने वाला है, उस सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत उन गिने चुने देशों में है खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा यह मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो हम देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है। तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री की ब्रेनस्टॉर्मिंग और संवाद यह है दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं खुल के, जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। उनके विचार जो है वो आम आदमी साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहां जाना है और 2070 तक कहां जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनबीसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन कि सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है जो देश में

0: बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है. ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लेट से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए. और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती है, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें. तो
1: जी
0: और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा,
1: जी
0: तो मैं
1: बिल्कुल
0: सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है, तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ.
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके. और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइंड ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है.
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं. अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं यहाँ ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है. लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रखकर चलना है. लेकिन के साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए यह है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को तो हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको यह भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में. एक नया वेस्ट एशिया बनेगा ये जब भी युद्ध समाप्त होता है, ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा, और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं. तो मुझे लगता है युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है, और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं.

0: और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामुद्रिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: पूर्ण भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होंगे। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने

0: लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोरेला सेमी हाई स्पीड दौड़ी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोरेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश के रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटाले से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। एक अन्य फैसले में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने पहली मंत्रिमंडल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मिले। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 153 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce.
2: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। टुडे अ मेजर डिसीजन वाज टेकन फॉर फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप। द एमएसपी हैज बीन फिक्स्ड एट कॉस्ट प्लस 50% और इवन हायर। विद दिस डिसीजन फार्मर्स विल रिसीव अ टोटल पे आउट ऑफ 2,60,000 करोड़ रुपीज। द एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट फॉर दिस ईयर विल बी 824 लाख मेट्रिक टन।
3: खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: Mr. Vaishnav said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesame. He said for grade A paddy the MSP will be 2,461 rupees per quintal, for jowar hybrid it will be 4,023 rupees per quintal, for bajra the MSP will be 2,900 rupees and for toor it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi has said the Union Cabinet's decision of approving an increase in MSP for kharif crops for marketing season 2026-27 will ensure

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। रूस ने भारत को आश्वासन दिया मौजूदा वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद सभी समझौतों को पूरा करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए पेचिंग पहुंचे। स्पेस एक्स प्रमुख एलन मस्क और एनवीडिया के जेनसेन हुआंग सहित कई शीर्ष सीईओ भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। ईरान, कजाकिस्तान, नाइजीरिया और उज्बेकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी कल से शुरू हो रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इनमें ईरान के कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री डॉ काजिम गरीबाबादी, कजाकिस्तान के उप विदेश मंत्री यरजान आशिकबाबेव, नाइजीरिया के वरिष्ठ राजनयिक राजदूत दुनोमा उमर अहमद और उज्बेकिस्तान के उप विदेश मंत्री अलोवेव जोराबेविच शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया है।

0: और अनिश्चित तथा अस्थिर वैश्विक परिवेश में प्रतिभा और कौशल के आदान प्रदान का महत्व और भी बढ़ गया है। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए रूस के प्रतिनिधिमंडल के स्वागत में ये बात कही। रूस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सर्गेई लावरोव कर रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोव ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि ये एक प्रमुख परियोजना है। उन्होंने कहा कि इस परमाणु संयंत्र के लिए नई बिजली इकाइयों के निर्माण में सहयोग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 15 मई को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
1: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारत इनोवेट्स 2026 के लिए आयोजित उद्योग जगत के नेताओं के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं और संस्थागत भागीदारों ने भारत के गहन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान आधारित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से भाग लिया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र जो IIT, IISc और अन्य अग्रणी संस्थानों से लेकर द्वितीय और तृतीय स्तर के शहरों तक की असाधारण प्रतिभाओं द्वारा संचालित है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पेचिंग पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ गए प्रमुख अधिकारियों में एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग, एप्पल के सीईओ टिम कुक, टेस्ला तथा स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क और ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक शामिल हैं। मेटा, वीजा, जेपी मॉर्गन, बोइंग और कारगिल के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। कल से शुरू हो रही 2 दिन की वार्ता में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी प्रतिद्वंद्वता के बीच ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। ये द्विपक्षीय संबंधों में आर्थिक और तकनीकी मुद्दों के महत्व को रेखांकित करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि रूस के 100 से अधिक ड्रोन ने आज यूक्रेन के कुछ इलाकों को निशाना बनाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने जानबूझकर यूक्रेन में

रेलवे, बुनियादी ढांचे और नागरिक स्थलों को निशाना बनाया है। इन हमलों में मध्य नीप्रो और उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्रों में यूक्रेन के आवासीय और रेलवे बुनियादी ढांचे, दक्षिण ओडेसा क्षेत्र में बंदरगाह बुनियादी ढांचे और मध्य पोल्टावा क्षेत्र में ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष के बीच विश्वास व्यक्त किया था कि रूस और यूक्रेन जल्द ही युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंचेंगे। पिछले हफ्ते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण अब समाप्ति की ओर है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। एयर इंडिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं में ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। दिल्ली शिकागो मार्ग, मुंबई न्यूयॉर्क मार्ग, दिल्ली शंघाई, चेन्नई सिंगापुर और दो अन्य मार्गों पर अस्थायी रूप से उड़ानें कम की जाएंगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। रूस ने भारत को आश्वासन दिया, मौजूदा वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद सभी समझौतों को पूरा करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए पेचिंग पहुंचे। स्पेस एक्स प्रमुख एलन मस्क और एनवीडिया के जेनसेन हुआंग सहित कई शीर्ष सीईओ भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने दो पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।